हवा मत वाली फिजा संसार सुहाना लगता है, मत होश हवा मत वाली फिजा संसार सुहाना लगता है।

सुबह की ताजी हवा जैसे हमें आगे बढ़ने का संदेश देती है, रुकना नहीं है, थकना नहीं है, हमेशा चलते रहना है। रास्ते में चाहे जैसी भी रुकावटें हों, कदम उम्मीद के साथ चलते रहने चाहिए।

भंवरा फूलों की तलाश में निरंतर उड़ता रहता है। उससे सीखिए कि जीवन में भी सुंदर अवसर खोजने के लिए मन को खुला और कदमों को गतिशील रखना चाहिए। हर नया दिन एक नया फूल है जिसमें सफलता की खुशबू छुपी है। और इसी विचार के साथ मैं आपसे लेती हूँ अनुमति, छोड़ के जा रही हूँ एक प्यारे से गीत के साथ। जल्द मुलाकात होगी और आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन ह्यः नवदिल्ल्यां सम्पन्नोपवेशनानन्तरं 13,000 कोटि रूप्यकाधिकाः 5 परियोजनाः अनुमोदिताः। एतासु 4 रेलमार्गसम्बद्धाः, एका च राजमार्गसम्बद्धा परियोजना अस्ति। सूचना प्रसारण मन्त्री अश्विनी वैष्णवः उक्तवान् यत् केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन पश्चिमबंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु, आन्ध्रप्रदेश इत्येतेषु 4 राज्येषु रेलमार्गस्य 8 बहुमार्गीय परियोजनाः अनुमोदिताः। असौ उक्तवान् यत् आहत्य 50,4,00,000 कोटि रूप्यकाणां व्ययेन एताः परियोजनाः 30,2,000 तमवर्षात् 31,2,000 तमवर्षपर्यन्तं पूर्णाः करिष्यन्ते।
1: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है।

0: ഇപ്പോൾ സമയം 7 മണി കഴിഞ്ഞ് 59 മിനിറ്റ് 55 സെക്കൻഡ്. ഇനി 8 മണിക്ക് സമാചർ പ്രഭാത്, തുടർന്ന് മോർണിംഗ് ന്യൂസ് ഡൽഹി റിലേ.
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के 8 जिलों को कवर करने वाली रेलवे की 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 22 के मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, सोनबरसा खंड को 4 लेन बनाने को भी स्वीकृति दी। गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के कोवलम में दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन का 4th दौर आज सिंगापुर में आयोजित किया जाएगा। बांग्लादेश में आज नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान के खिलाफ आर्थिक युद्ध की घोषणा। ईरान की मदद करने वाले देशों को दी बुरे आर्थिक नतीजे भुगतने की धमकी। और FIH हॉकी विश्व कप में पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम आज शाम एक्सल्टफेन में इंग्लैंड से खेलेगी। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने

0: पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के 8 जिलों को कवर करने वाली 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिससे भारतीय रेल के वर्तमान नेटवर्क में लगभग 410 किलोमीटर की वृद्धि होगी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इन परियोजनाओं की लागत 9,450 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है और इन्हें 2030-31 तक पूरा करने का लक्ष्य है।
1: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का 3rd और 4th लाइन। और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा तक ये 4 लेन हाईवे बनाने का टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट्स कैबिनेट ने अप्रूव किए।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 के मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनबरसा खंड को 4 लेन वाले मानक राजमार्ग में अपग्रेड करने को भी मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित परियोजना बिहार के बढ़ते राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क से जुड़ने के कारण रणनीतिक और आर्थिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है।
1: ये प्रोजेक्ट नेपाल के बॉर्डर से लेके स्टार्ट होता है। 83 किलोमीटर का ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट है। एग्जिस्टिंग लाइन को अपग्रेड किया जाएगा 4 लेन हाईवे में और 3,591 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट इसमें हो। कई मेजर टूरिज्म के स्पॉट्स हैं, प्लस एक तरीके से ये सारा इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है।
0: गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के कोवलम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल हैं। बैठक में दक्षिणी क्षेत्र के सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और प्रशासक तथा प्रत्येक राज्य से 2 वरिष्ठ मंत्री उपस्थित रहेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इस बैठक से द्विपक्षीय रक्षा संबंध और मजबूत होंगे, रणनीतिक भरोसा और सहयोग बढ़ेगा तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। दोनों देश समुद्री सुरक्षा में गहरे सहयोग और मेक इन इंडिया फ्रेमवर्क के तहत रक्षा उपकरणों और तकनीक के क्षेत्र में करीबी सहयोग पर विचार विमर्श करेंगे। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने आर्मेनिया की अपनी 2 दिन की यात्रा पूरी कर ली है। यात्रा के दौरान उन्होंने आर्मेनिया के उप रक्षा मंत्री करेन ब्रुटियान और जनरल स्टाफ प्रमुख एडवर्ड अस्ट्रियान के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बातचीत में रक्षा और सैन्य तकनीक सहयोग के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन का 4th संस्करण आज सिंगापुर में आयोजित किया जाएगा। ये सम्मेलन नए और उभरते क्षेत्रों सहित सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। एक रिपोर्ट।
2: सम्मेलन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा वाणिज्य, उद्योग, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद भाग ले रहे हैं। इसकी पहली बैठक सितंबर 2022 में नई दिल्ली में हुई थी। इसके बाद दूसरी बैठक अगस्त 2024 में सिंगापुर में और तीसरी बैठक अगस्त 2025 में नई दिल्ली में हुई। इन बैठकों में उन्नत विनिर्माण, डिजिटलीकरण, स्वास्थ्य सेवा और चिकित्सा, कौशल विकास तथा स्थिरता पर हुई चर्चाओं से भारत सिंगापुर व्यापक रणनीतिक साझेदारी की रूपरेखा तैयार हुई। इसे पिछले वर्ष सितंबर में सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग की भारत यात्रा के दौरान लागू किया गया था। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ये सम्मेलन दोनों पक्षों के बीच जारी पहलुओं की प्रगति की समीक्षा करने और आपसी सहयोग को और मजबूत करने के अवसर प्रदान करेगा। इसके साथ ही भारत सिंगापुर व्यापारिक गोलमेज सम्मेलन का 4th संस्करण भी आयोजित किया जाएगा। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तत्काल सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया है। भारत ने कहा है कि परिषद की संरचना और निर्णय लेने की प्रक्रिया वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों के अनुरूप होनी चाहिए और इसमें विकासशील देशों को अधिक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। परिषद में कार्यप्रणाली पर चर्चा में संयुक्त राष्ट्र में भारत की प्रतिनिधि योजना पटेल ने कहा कि सुधारों की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक आवश्यक है। उन्होंने स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार

0: की सदस्यता में विस्तार और विकासशील देशों के लिए अधिक प्रतिनिधित्व की भारत की मांग दोहराई।
1: India's position on reforms of the security.
2: सुरक्षा परिषद में सुधारों पर भारत का रुख स्पष्ट रूप से ज्ञात है। हम ग्लोबल साउथ के लिए अधिक प्रतिनिधित्व के साथ दोनों श्रेणियों में विस्तार चाहते हैं। इसे केवल स्पष्ट रूप से परिभाषित बिंदुओं और वार्ताओं के माध्यम से ही हासिल किया जा सकता है।
0: उन्होंने कहा कि वर्ष 1945 के बाद से संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। इंडिया डे फेस्टिवल आज मॉस्को में शुरू हो रहा है। चार दिवसीय इस फेस्टिवल में भारतीय और रूसी समुदायों को संस्कृति, परंपराओं और लोगों के बीच आपसी संबंधों का जश्न देखने को मिलेगा। एक रिपोर्ट।
3: यह फेस्टिवल मॉस्को के गोस्टिनी द्वोर में आयोजित किया जाएगा। संस्कृतियों की एकता, लोगों की दोस्ती थीम पर आयोजित इस फेस्टिवल में कई जगह पर अलग अलग तरह के कार्यक्रम होंगे। यहाँ बने लगभग 20 खास जोन में आने वाले लोगों को भारतीय संस्कृति के अलग अलग पहलुओं जैसे योग, शतरंज, भारतीय शादियां, नृत्य, भारतीय व्यंजन और आयुर्वेद को जानने समझने का मौका मिलेगा। इस फेस्टिवल में पूरे रूस से लगभग 75 योग स्कूल और दूसरे देशों के इंस्ट्रक्टर भी शामिल होंगे। भारतीय नृत्य की विविधता और कलात्मक परंपराओं को दिखाने वाले कार्यक्रमों में 200 से ज्यादा भारतीय और रूसी डांसर भी हिस्सा लेंगे। समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: बांग्लादेश में 35 साल के लंबे अंतराल के बाद राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक संसद में मतदान होगा। सत्ताधारी दल के सांसद बीएनपी के नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर का मुकाबला 11 पार्टियों के विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल ओली अहमद के बीच होगा। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति कल शाम बंग भवन के दरबार हॉल में बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ नए आर्थिक युद्ध की घोषणा की है। ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान को अमेरिका के साथ समझौता करने के कई अवसर दिए गए लेकिन वो विफल रहा। एक रिपोर्ट।
4: ट्रंप ने ईरान की मदद करने वाले किसी भी देश को आर्थिक प्रतिबंध लगाने की धमकी भी दी है। उन्होंने चेतावनी दी है कि कोई भी देश जो अपने वित्तीय संस्थानों, व्यवसायों, हवाई अड्डों या सरकारी एजेंसियों को ईरान को समर्थन देने की अनुमति देता है उसे भी भारी आर्थिक परिणामों का सामना करना पड़ेगा। साथ ही अपनी चेतावनी को दोहराया कि ईरान को कभी भी परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ट्रंप ने कहा कि बातचीत भविष्य में फिर से शुरू हो सकती है लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि तेहरान को पहले समझौता करने के लिए तैयार होना होगा। इस बीच ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बगीर गालिबफ ने कहा कि ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य को तब तक नहीं खोलेगा जब तक अमेरिका 14 सूत्री ज्ञापन के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं कर लेता। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
5: जी विशाल, खेल खबरों में शुरुआत करते हैं हॉकी से। FIH विश्व कप के पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम का सामना आज इंग्लैंड से होगा। ये मैच एम्स्टलवीन के वैगनर स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 6:30 बजे से शुरू होगा। दूसरी ओर भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कल अपने अंतिम ग्रुप मैच में चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 5-3 से हराकर अगले दौर के लिए क्वालिफाई कर लिया है। हरमनप्रीत सिंह और हार्दिक सिंह ने 2-2 गोल किए जबकि अभिषेक ने 1 गोल दागा। और विशाल, अगर बात करें बैडमिंटन की तो BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में महिला सिंगल्स में PV सिंधु का मुकाबला चीन की खिलाड़ी से होगा। पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी और इंडोनेशिया के अलवी फरहान आमने सामने होंगे। वहीं पुरुष डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी चुनौती पेश करेंगे। महिला डबल्स में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद का मुकाबला जापान की जोड़ी से होगा। अगर बात की जाए मिक्स्ड डबल्स में तो ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो चीन की जोड़ी से खेलेंगे। और ले चलते हैं अपने श्रोताओं को क्रिकेट के मैदान की तरफ। तो श्रीलंका के गोल में भारत ने 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका को 165 रन से हराया है। भारत ने श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। तो विशाल, ये थी अब तक की कुछ महत्वपूर्ण खेल खबरें।
0: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में कल तक तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तरी ओडिशा के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है।
6: उत्तरी ओडिशा के कई इलाकों में बाढ़ का पानी गंभीर समस्या बना हुआ है। पानी का स्तर अभी भी ऊंचा है और धीरे धीरे कम हो रहा है जिससे कई लोग फंसे हुए हैं। बालेश्वर जिले में बालियापाल सबसे बुरी तरह प्रभावित इलाकों में से एक है जहां खबर है कि 45,000 से ज्यादा लोग अभी भी फंसे हुए हैं।

0: हैं। भद्रक जिले में स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र बंद है। सुवर्णरेखा नदी का जलस्तर भी बढ़ रहा है। राजघाट पर आज सुबह 6 बजे नदी 11.80 मीटर के स्तर पर बह रही थी, जबकि खतरे का निशान 10.36 मीटर है। सुवर्णरेखा की बाढ़ से लगभग 2,80,000 लोग प्रभावित हुए हैं। IMD ने इस शनिवार से फिर बारिश का अनुमान जताया है और मयूरभंज, केंदुझर और सुंदरगढ़ जिलों के लिए येलो वार्निंग जारी की है, जिससे और ज्यादा बाढ़ आने की चिंता बढ़ गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: इस बीच राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों में बारिश से गर्मी से राहत मिली है, मौसम सुहावना हो गया है, कई इलाकों में कल रात से बारिश हो रही है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
2: धन्यवाद विशाल। जम्मू कश्मीर भारत का महत्वपूर्ण अंग। भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो कोर का ये बयान आज की सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। दैनिक जागरण के अनुसार जम्मू कश्मीर के अपने पहले दौरे में सर्जियो कोर ने कश्मीर को लेकर अमेरिकी रुख में बड़े बदलाव का दिया संकेत। कहा, जम्मू कश्मीर के लिए यात्रा परामर्श की करेंगे समीक्षा। भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी के खिलाफ छात्र आंदोलन के बीच झारखंड सरकार की बड़ी कार्रवाई दैनिक भास्कर में है। 22 भर्ती परीक्षा रद्द, CID को सौंपी गई जांच। UPSC जैसा सिस्टम क्यों नहीं बनाते, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA से सुप्रीम कोर्ट का ये सवाल नवभारत टाइम्स में है। जेंजी को साधने की मोर्चाबंदी तेज, अमर उजाला लिखता है, भारतीय जनता पार्टी ने विश्वविद्यालयों में युवाओं से संवाद का जिम्मा केंद्रीय मंत्रियों को सौंपा। नए सिम कार्ड के लिए नए नियम सख्त, हिंदुस्तान लिखता है, साइबर धोखाधड़ी और डिजिटल अरेस्ट रोकने के लिए सरकार ने नए CM जारी करने की प्रक्रिया और कठोर की। और डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के जरिए तय समय सीमा से अधिक मोबाइल कनेक्शन रखने वाले ग्राहकों की जाएगी पहचान।
1: धन्यवाद वैष्णवी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के 8 जिलों को कवर करने वाली रेलवे की 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 22 के मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, सोनबरसा खंड को 4 लेन बनाने को भी स्वीकृति दी। गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के कोवलम में दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन का 4था दौर आज सिंगापुर में आयोजित किया जाएगा। बांग्लादेश में आज नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान के खिलाफ आर्थिक युद्ध की घोषणा। और FIH हॉकी विश्व कप में पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम आज शाम एम्स्टरडम में इंग्लैंड से खेलेगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Union Cabinet approves 4 multi-tracking railway projects covering 8 districts of West Bengal, Odisha, Tamil Nadu and Andhra Pradesh. Cabinet also clears 4 laning of Muzaffarpur, Sitamarhi, Sonbarsa section of NH-22 in Bihar. Union Home Minister Amit Shah to chair Southern Zonal Council meeting at Kovalam in Tamil Nadu this morning. 4th round of India-Singapore Ministerial Roundtable to be held in Singapore today. Bangladesh to go to polls today to elect a new president. US President Donald Trump declares economic warfare against Iran, threatens economic punishment for any country helping Tehran. And Indian women's team to take on England in their final Pool D match of FIH Hockey World Cup in Amstelveen this evening. And now the news in detail. The Union Cabinet has approved 5 projects worth over 13,000 crore rupees, including 4 railway and 1 highway project. Briefing media after the meeting in New Delhi yesterday, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said the Union Cabinet has cleared 4 multi-tracking projects of railways covering 8 districts across 4 states of West Bengal, Odisha, Tamil Nadu and Andhra Pradesh. He said with total estimated cost of 9,450 crore rupees, the projects are scheduled for completion by 2030-31.
4: Five major decisions have been taken. The first 4 projects are related to the railways, while the 5th is the highway project. The first 4 railway projects include the quadrupling of the Howrah-Chennai main

0: संबंध
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का प्यार भरा नमस्कार
1: और अजीत का भी जोहार और नमस्कार। कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत राहुल, गुरशब्द सिंह राहुल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: सूर्य बिना कुछ मांगे हमें प्रकाश देता है, नदी बिना भेदभाव जल देती है, वृक्ष पत्थर खाने पर भी फल देते हैं। उन्होंने कभी नहीं कहा कि

0: सोनी जल्दी उठ जा बेटी, भीड़ हो जाएगी।
1: मम्मी सोने दो ना, ये भी कोई समय है उठने का? अभी तो सुबह के 3:30 ही बजे हैं।
0: अरे बेटी, 2 दिनों से पानी नहीं आया है। हमारे सामुदायिक रेडियो पर मैसेज आया था कि मोहल्ले में आज सुबह 4 बजे टैंकर से पानी दिया जाएगा। चल तैयार हो जा, मैं भी बाल्टी ले लेती हूँ।
1: माँ भैया को भी ले चलते हैं ना?
0: अरे उसे सोने दे, भैया थका हुआ है। इन दिनों स्कूल में फुटबॉल मैच चल रहे हैं ना, कसरत करने भी तो जाता है कितनी।
1: माँ मैं भी तो स्कूल जाती हूँ और आपके साथ साथ घर का सारा काम भी कराती हूँ, क्या भैया ही थकता है बस।
0: ओहो अब चल भी, बहस मत कर।
2: नहीं माँ, इस बार मेरी बारी, अगली बार भैया की बारी, ठीक है?
0: ठीक है बाबा, ठीक है, अब चल भी, बहस मत कर।
1: ठीक है चलो।
0: अरे तू कहाँ से आ गई?
3: तो साथियों, ऐसा दृश्य थोड़े बहुत अंतर के साथ दुनिया के बहुत से देशों में देखने को मिल जाएगा। आए दिन अलग अलग समाचार माध्यमों से सूचनाएं मिलती हैं कि जलाशय सूख रहे हैं, नदियां सूख रही हैं।
4: जी हाँ, इसी तरह सोनी के मोहल्ले और आसपास के क्षेत्रों में अक्सर

0: आने की समस्या बनी रहती थी और हर बार वही क्रम चलता रहता था। वही क्रम यानी सोनी शाम को रेडियो सुन रही थी।
1: नमस्ते, हमारे कम्युनिटी रेडियो में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपका रेडियो होस्ट गौहर परवेज। शनिवार को संध्या 7 बजे हरित नगर कम्युनिटी हॉल में आप सबका रहेगा इंतजार। हम लेकर आ रहे हैं बच्चों के लिए एक बेहद खास प्रोग्राम, पानी रे पानी। बेहद खास इसलिए कि उस दिन आप मिल पाएंगे अपने चहेते रेडियो किरदार झुमरू और झुमकी से। तो आइएगा जरूर।
0: बच्चे बहुत उत्साहित थे क्योंकि प्रोग्राम में आ रहे थे उनके प्रिय रेडियो किरदार झुमरू और झुमकी।
2: इनका प्रोग्राम तो बहुत अच्छा होता है।
3: अरे आ गए आ गए आ गए, देखो
4: देखो आ गए।

0: तो प्यारे प्यारे बच्चों और साथियों, मैं हूँ तुम्हारी दोस्त झुमकी।
1: और मैं हूँ झुमरू।
0: नमस्कार।
2: तो झुमकी, आज हम बच्चों से क्या चर्चा करने जा रहे हैं?
0: ये तो बहुत सही सवाल किया है आपने। आज हम चर्चा करेंगे, करेंगे किस पर?
2: किस पर?
0: पानी पर।
2: पानी पर? क्यों?
0: वो इसलिए क्योंकि इन दिनों पानी की समस्या ही सबसे बड़ी है।
2: हाँ, बड़ी तो है। अब देखो ना, इन बच्चों को सुबह सुबह 3-4 बजे पानी लेने के लिए लाइन में खड़ा होना पड़ता है। क्यों बच्चों, है ना यही बात?
3: हाँ, ये बात तो है,
4: पानी की समस्या तो है,
5: हम तो परेशान हो गए हैं।
2: तो बच्चों, इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा जल चक्र।
6: जल चक्र?
2: हाँ, तो आज हम खेलेंगे भाषा का खेल, जिसमें आपको करना है शब्दों का मेल।
0: तो चलो शुरू करें।
2: चलो झुमकी।
0: ठीक है ठीक है, तो चलो मैं शुरू करती हूँ। सूरज निकला चमचमाया, धूप ने फिर जल को तपाया, आगे जोड़ो झुमरू जी और वो भी ताल में।
2: हाँ हाँ, जोड़ता हूँ मैं, ये लो बात ध्यान से मेरी सुन लो। नदियों तालों का जल उड़ाया, भाप बन जल ऊपर आया।
0: झुमरू जी ने तो कमाल कर दिया। अब ये भी लीजिए, जब भाप बनी तब बादल छाए, नील गगन में झूले खाए, जब लग गए बूंदों से बादल, भारी हो गए तब बादल।
2: रिमझिम रिमझिम वर्षा आई, चहुं ओर हरियाली छाई, झरनों नदियों में बह पानी, जल चक्र की है ये कहानी।
0: इसके बाद क्या हुआ झुमरू जी?
2: बताते हैं बताते हैं, सुनिए। पानी फिर से सागर जाता।

0: आता बार बार यही क्रम दोहराता।
1: क्या बात है। सूरज भाप बादल वर्षा का जल चक्र यूं चलता जाता। सभी बोलेंगे जल चक्र यूं चलता जाता।
2: तो बच्चों कैसा लगा भाषा का ये खेल?
3: बहुत अच्छा।
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम पानी रे पानी जल चक्र की कहानी। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम वो बारिश का दिन।
5: ये कार्यक्रम एक रोचक नाटक के द्वारा वैज्ञानिक खोज की जानकारी देते हुए बताता है कि ज्वर मापी यंत्र थर्मामीटर का आविष्कार कैसे हुआ।
6: तनु माँ के साथ छुट्टियों में नाना जी के पास आई हुई है। तनु के नाना जी आजकल तनु के साथ छोटे बच्चे की तरह हो गए हैं। वैसे वो शहर के जाने माने डॉक्टर हैं, पर अब रिटायर हो चुके हैं और सुबह शाम कुछ समय के लिए घर पर ही मरीजों को देखते हैं। नाना जी के साथ तनु रोज सैर करने जाती है, पर आज बारिश के कारण दोनों घर में बैठकर कैरम खेल रहे हैं।
7: ये मारा। हरा दिया, हरा दिया।
8: वैसे तनु, हाँ बारिश ने तो हम दोनों को घर पर ही रोक रखा है।
9: जी,
8: पर कैरम का खेल खूब जमा। न जाने कितने समय के बाद कैरम बोर्ड को हाथ लगाया आज मैंने, फिर भी एक खिलाड़ी को हरा दिया।
9: नाना जी, मैं तो हार कर भी जीत गई हूँ।
8: ये कैसी अजीब बात है।
9: देखिए ना, आप चाहे हारे या जीते, हर बार आपको मुझे कहानी सुनाने का इनाम तो देना ही पड़ता है।
8: ये बात तो है। अच्छा ठीक है, ये बताओ आज कौन सी कहानी सुनोगी, परियों की या जादूगर की?
9: ना परियों की ना जादू वाली, मुझे तो वैसी ही कहानी सुनाइए जैसे हर दिन सुनती हूँ मैं आपसे।
8: अच्छा बेटा तरु, तेरे डॉक्टर नाना के पास तो बीमारी रोगी और उनके स्वस्थ होने की कहानियाँ ही है बस।
9: लेकिन एक बात तो है, आपकी कहानियाँ परियों की कहानी से अधिक रोचक और मजेदार होती हैं।
8: अच्छा।
9: हाँ और क्या, तो सुनाइए ना। हाँ, जल्दी सुनाइए।
8: हाँ, बेटा सुनाता हूँ। अरे सोचने तो दो,
9: जल्दी
8: मैं किसकी कहानी सुनाऊं देखो।
9: अरे जीवन काका।
8: अरे अरे आओ जीवन, क्या बात है भाई।
10: बाबूजी, आज सुबह से बुखार सा लग रहा है, सिर में भी दर्द है।
8: बुखार? अरे भाई बारिश में भीग तो नहीं गए कहीं? आओ आओ अभी देखता हूँ, आओ इधर आओ।
10: जी
8: यहाँ लेट जाओ।
10: जी
8: लग रहा है बुखार। अरे बेटे तनु।
9: जी।
8: जरा अंदर से थर्मामीटर तो ले आओ।
9: जी अभी लाई।
8: हाँ हाँ खांसी भी है तुम्हें, जरा जबान दिखाओ तो।
10: जी।
8: पेट भी गड़बड़ है तुम्हारा तो। एक मिनट देखो, ये बारिश की वजह से हुआ है।
10: जी।
8: पहली बारिश में थोड़ा सावधान रहा करो।
10: जी जी जी, जी।
8: अरे बदलते मौसम का असर तो होता ही है ना भाई जीवन।
9: जी, जी, जी, नाना जी।
8: हाँ ला बेटा ला। जीवन
10: जी
8: जरा मुंह खोलो, लो इसे जीभ के नीचे रख लो।

0: डॉक्टर साहब ने थर्मामीटर लगाकर जीवन का बुखार देखा तो हल्की हरारत थी। उन्होंने जीवन काका को दवा दी और आराम करने के लिए कह दिया। जीवन चला गया। नाना जी को लगा जब वो थर्मामीटर लगाकर जीवन का बुखार देख रहे थे तो तनु कभी उन्हें और कभी थर्मामीटर को ध्यान से देख रही थी।
1: अरे तनु
2: जी,
1: क्या बात है,

0: कोई कहानी सोच रही है अपने नाना को सुनाने के लिए है?
1: नाना जी, मैं सोच रही थी, जब पुराने समय में थर्मामीटर नहीं थे तो डॉक्टर मरीज का बुखार कैसे नापते थे?
0: बेटी तनु
1: जी,
0: ये समझ लो कि इसका उत्तर अपने आप में एक मजेदार कहानी है।
1: तो फिर आज वही कहानी सुनाइए ना।
0: सुनो
1: जी,
0: जब थर्मामीटर नहीं था ना, तब डॉक्टर रोगी को छूकर ही उसके ज्वर यानी बुखार का अनुमान लगाने की कोशिश करते थे।
1: लेकिन अनुमान से शरीर में कितना डिग्री बुखार है ये पता लगाना तो कठिन होता होगा।
0: एकदम ठीक बात कही तूने बेटा।
1: दुनिया का सबसे पहला थर्मामीटर किसने बनाया था?
0: ये जानने के लिए तो तुम्हें लगभग 400 वर्ष पीछे इतिहास में जाना होगा। और बिटिया, वो भी अपने देश से दूर, विदेश में।
1: तो चलिए ना, मैं तो तैयार हूँ इस इतिहास यात्रा के लिए।
0: चलो। ये यूरोप के एक देश इटली की घटना है बेटा। तब वहां एक चिकित्सक थे डॉक्टर सेक्टोरियस।
1: जी।
0: दुनिया का सबसे प्रथम थर्मामीटर बनाने का श्रेय उन्हीं को दिया गया है।
1: अच्छा।
0: हाँ, पहला थर्मामीटर देखने में इतना विचित्र था कि जब डॉक्टर इससे किसी रोगी का बुखार देखते तो हंसी आ जाती थी।
1: नाना जी, हंसना तो सेहत के लिए अच्छा होता है। वैसे कैसा था उनका बनाया थर्मामीटर?
0: बेटे, एकदम अलग आकार था।
1: अच्छा।
0: बिल्कुल अलग आकार का था ये पहला थर्मामीटर।
1: जी।
0: उससे बुखार देखने के लिए डॉक्टर को पानी में उठते बुलबुले गिनने पड़ते थे।
1: अच्छा।
0: अर्थात ज्यादा बुलबुलों का मतलब होता था तेज बुखार। कम बुलबुले हो तो थोड़ा बुखार।
1: लेकिन पानी में उठने वाले हवा के बुलबुलों का बुखार से क्या संबंध हो सकता है?
0: बिटिया रानी, वही मजेदार बात सुनो। वो थर्मामीटर भी शीशे की एक लंबी ट्यूब या नली के आकार का था, जो बीच में कई जगह मुड़ी हुई थी।
1: अच्छा।
0: हाँ बेटा, उसके एक छोर पर शीशे का एक छोटा सा ग्लोब था।
1: अच्छा।
0: हाँ, और नली का दूसरा छोर खुला हुआ था।
1: वाह, शीशे के ग्लोब वाला थर्मामीटर। लेकिन बुखार कैसे देखते थे उस थर्मामीटर से?
0: बताते हैं बेटा, बताते हैं। देखो
1: जी,
0: जिसे बुखार होता
1: जी,
0: डॉक्टर उसके मुंह में नली का ग्लोब वाला भाग रखते
1: जी।
0: उसके बाद नली का दूसरा छोर एक खुले बर्तन में भरे पानी के अंदर डाल दिया जाता।
1: फिर
0: मुंह में रखा ग्लोब शरीर के तापमान से गर्म होने लगता
1: जी।
0: अब ग्लोब गर्म होता तो उसमें मौजूद हवा भी गर्म होकर फैलने लगती।
1: अच्छा।
0: और नली के मुड़े हुए हिस्से में से होकर दूसरे छोर पर पानी से भरे बर्तन में पहुंचने लगती।
1: लेकिन बुखार?
0: ओहो बेटा, बताता हूँ, सांस लेने दे बूढ़ा आदमी। सुन ध्यान से
1: जी।
0: तो बेटा, तुम तो जानती हो कि हवा पानी से हल्की होती है ना
1: जी,
0: इसीलिए वो बुलबुलों के रूप में पानी से बाहर निकलती जाती
1: जी।
0: शरीर का तापमान जितना अधिक होता उतने ही ज्यादा बुलबुले बनते, और डॉक्टर उन बुलबुलों को गिनते रहते।
1: अच्छा।
0: और बुखार का अनुमान लगा लेते। हाँ, लेकिन एक बात।
1: क्या?
0: देखो, पहले प्रयोग के समय देखा जा चुका था
1: जी,
0: कि सामान्य तापमान वाले व्यक्ति के मुंह में ग्लोब से पानी में कितने बुलबुले निकलते थे।
1: यानी बुलबुलों की संख्या जितनी अधिक होती, रोगी का बुखार उतना ही तेज होता।
0: बिल्कुल ठीक, एकदम ठीक।
1: लेकिन बात तो तब भी अनुमान पर ही टिकी होती ना।
0: हाँ बेटा, ये तो बात सही है, क्योंकि तापमान नापने का कोई तरीका तो तब था नहीं।
1: हाँ जी।
0: इस तरह ग्लोब और बुलबुलों वाला थर्मामीटर

0: जी
1: दुनिया का पहला थर्मामीटर माना गया।
0: अच्छा।
1: हाँ बेटा, आधुनिक थर्मामीटर जैसे आकार वाला थर्मामीटर फ्रांस में सन 1654 में बना।
0: जी
1: समझ गई ना।
0: जी,
1: पर इसमें पारे के स्थान पर अल्कोहल भरा होता था।
0: जी,
1: और तापमान नापने के लिए उस पर मोती लगे होते।
0: अच्छा।
1: आज ऐसे निशान नहीं होते थे बेटा।
0: वाह, मोतियों से जड़ा थर्मामीटर।
1: नहीं बेटा, वो सच्चे मोती नहीं होते थे, मोती जैसे होते थे।
0: अच्छा।
1: हाँ बेटा, और फिर 19वीं सदी के आते आते आज के उपयोग में आने वाला थर्मामीटर बना लिया गया।
0: अच्छा।
1: आजकल बिना पारे वाले थर्मामीटर बन गए हैं।
0: जी,
1: इसे डिजिटल थर्मामीटर कहते हैं।
0: अच्छा।
1: डिजिटल थर्मामीटर से बुखार कितना है ये जानने के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती बेटा।
0: जी,
1: लगाते ही डिजिटल थर्मामीटर सही तापमान बता देता।
0: अरे वाह।
1: हाँ। पर बेटा, डिजिटल थर्मामीटर महंगे होने के कारण अभी भी ज्यादा चलन में नहीं है।
0: हाँ, और इस बार जब किसी को बुखार होगा तो हम डिजिटल थर्मामीटर से ही देखेंगे।
1: हाँ, क्यों नहीं बेटा। और बेटे, अब नेत्रहीन लोगों को बोलकर बुखार बताने वाला थर्मामीटर भी बन गया है।
0: वाह, क्योंकि नेत्रहीन तो थर्मामीटर पर आई रीडिंग को नहीं पढ़ सकते।
1: बिल्कुल बिल्कुल बेटा, ये थर्मामीटर तापमान दिखाता नहीं।
0: जी,
1: बोलकर बतला देता है।
0: नाना जी।
1: हाँ?
0: मैंने देखा है कि छोटे बच्चों का बुखार देखना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो लगातार अपने हाथ पैर चलाते रहते हैं।
1: सही कह रहे बेटा, लेकिन एकदम छोटे शिशु का बुखार देखने के लिए भी विशेष प्रकार का थर्मामीटर बना लिया गया है।
0: अच्छा।
1: हाँ, इसे क्या करते हैं कि बच्चे के कान में लगाकर बुखार कितना है ये जान लिया जाता है।
0: अरे वाह।
1: हाँ, और शिशु को जरा भी परेशानी नहीं होती।
0: वाह, ये तो बड़ी मजेदार जानकारी दी आपने नाना जी।
1: है ना
0: जी।
1: अरे बेटा, नाना किसका हूँ।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम वो बारिश का दिन, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता,
2: जगबंधु,
3: चेतना
2: और मंजू जी के साथ आज्ञा दीजिए।
3: नमस्कार। उमंग।

0: आ वह ऑटो में लेटा हुआ था। एक लड़का ऑटो के पास जाकर देखा, कैसे उसके एक पैर और एक हाथ में प्लास्टर चढ़ा था।
1: हाय बेचारा केशव।
0: ऑटो वाले से पता चला कि केशव के परिवार उसको लेकर अपने गांव जा रहा है। ऑटो चल पड़ी। उन खिलाड़ी लड़कों ने ऑटो को रोक दिया और उन्होंने केशव के माँ बाप से खुशहाल पूछा, सुख विवरण पूछा, सहानुभूति प्रकट की। केशव जल्दी ठीक हो जाने का आग्रह प्रकट किया।
2: अंदुमें लड़कों को केशव को अनुगम्बा हुई।
0: ठीक है अंदुमें केशव पर उनको अनुगम्बा हुई। लड़कों ने अपने नए बैट, नए बॉल, पैड, शील्ड सब कुछ ऑटो के सीट पर केशव को दिखाते हुए रख दिए। एक कैप्टन ने अपने जेब से व्हाइट कैप निकालकर केशव के सिर के पास रख दी। एक टीम के कैप्टन ने केशव के लौटते समय, वापस आते समय अपने टीम में खेलने का आग्रह भी प्रकट किया। ऑटो आगे बढ़ी। केशव ने पिता से व्हाइट कैप पहनाने को कहा। पिता ने केशव को कैप पहना दिया। लड़के केशव को देखकर हाथ हिलाया। केशव उनकी ओर देखकर मुस्कुराया। फिर उसने सिर से कैप उतारी और ऑटो के बाहर निकालकर लहराने लगा। कहानी यहाँ समाप्त होती है। कैसे लगी कहानी?
2: बहुत अच्छी कहानी है, मामी कहानी है।
0: ठीक है रिजो, तुम्हारे विचार में ये कहानी कैसी है?
1: बड़ी संवेदनशील कहानी है।
0: ठीक है, इस कहानी का मुख्य विषय क्या है रिजो?
1: प्रवासी मजदूरों के संघर्षशील जीवन और मानवीय संवेदनाओं का सजीव चित्रण इस कहानी का विषय है।
0: ठीक है कहानी का कौन सा पात्र आपको सबसे ज्यादा पसंद आया?
2: केशव।
0: ठीक है, तो हम केशव के चरित्र पर टिप्पणी लिखें?
2: हाँ जी।
0: देखो, एक पात्र के चरित्र पर टिप्पणी लिखते समय कुछ बिंदुओं पर, कुछ मुख्य बातों पर ध्यान रखना है। ये मुख्य बिंदुएं मैं बताऊंगा, तुम्हें अपनी कॉपी में लिख लेना है।
2: हाँ जी, कॉपी ले लिया।
0: लिखो, पहला पात्र का नाम।
2: पात्र का नाम।
0: पात्र की विशेषता।
2: पात्र की विशेषता।
0: पात्र का व्यक्तित्व।
2: पात्र का व्यक्तित्व।
0: पात्र का मनोभाव।
2: पात्र का मनोभाव।
0: पात्र की भूमिका।
2: पात्र की भूमिका।
0: देखो, इन मुद्दों की सहायता से, इन मुख्य बिंदुओं की सहायता से केशव के चरित्र पर टिप्पणी लिखकर प्रस्तुत करना है। अब टिप्पणी लिखो और प्रस्तुत करो।
2: हाँ जी,
1: केशव का चरित्र चित्रण।
0: ठीक है, तो रुजो तुम ओ टिप्पणी पढ़ सुनाओ।
1: केशव का चरित्र चित्रण। श्री लोगबाबू की कहानी व्हाइट कैप का मुख्य पात्र है केशव। उनका जन्म एक साधारण मजदूर परिवार में हुआ। कहानी में वो 8 साल का छोटा सा नाटा सा सांबला सा लड़का है। उसे क्रिकेट खेलने का बड़ा शौक था। वह हमेशा खेल से जुड़ा रहना चाहता है, लेकिन उसके पास क्रिकेट खेलने के लिए बल्ला बॉल जैसा महंगे साधन नहीं है। शहरी लड़के उसे टीम में शामिल नहीं करते थे, फिर भी वह दूर जाने वाली गेंदों को बिना डर से ढूंढकर लाता था। वह अपनी जान की परवाह किए बिना बहुमंजिले मकान के ऊपर तक चढ़कर गेंद लेकर खिलाड़ियों को फेंक देता है। उसकी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा देखकर अंत में शहरी लड़के उसको प्यार करते हैं। केशव को अपने टीम में शामिल करना चाहता है।
0: देखो, ये केशव के चरित्र पर टिप्पणी तुम्हें ध्यान रखना है। परीक्षा के प्रश्न पत्र में ऐसा प्रश्न भी पूछा जाएगा। तो यहाँ पाठभाग की समाप्ति हुई, लेकिन इस पाठ के अंत में अभ्यास के रूप में अनेक प्रश्न दिए गए हैं। ये प्रश्न पर हमें एक ध्यान दें। देखो, प्रश्न संख्या 44 ले लो।
2: ले लिया जी।
0: देखो, वहाँ लिखा है तीसरा प्रश्न, बड़े लड़कों को वहाँ बॉल मांगने जाने पर अपमानित होने का डर रहता था। वहाँ एक शब्द के नीचे रेखा खींचा है, वो कौन सा शब्द है?
1: को।
0: देन अगला वाक्य देखो, केशव को किसी भी टीम में जगह नहीं मिली थी। वहाँ किस शब्द के नीचे रेखा खींचा है?
2: को।
0: लड़के केशव को

0: वापस अहाते के बाहर खींच लेते, वहां भी एक शब्द के नीचे रेखा खींचा है, वो कौन सा शब्द है?
1: को।
0: ठीक है। केशव किनारे बैठा बाकी लड़कों को खेलता देखता रहता, यहां किस शब्द के नीचे रेखा खींचा है?
1: को।
0: देखो इन चारों वाक्यों में को शब्द के नीचे रेखा खींचा है। को विभक्ति प्रत्यय है, उपसर्ग है, इस प्रकार के को उपसर्ग वाले वाक्य इस पाठ से ढूंढ निकालना और लिखकर लाना भी है। ठीक है ना?
1: हाँ जी।
0: आज का क्लास यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद।
1: धन्यवाद जी।
2: अभी तक आप सुन रहे थे हिंदी पाठ। अध्यापक थे डॉक्टर डी राजेंद्र बाबू, छात्र थे रिजो और रिमा। इसी के साथ आज का हिंदी पाठ यही समाप्त होता है। नमस्कार।

0: महासागरस्य च सुरक्षा परस्परं दृढतया संलग्ना वर्तते। मन्त्रिणा स्पष्टीकृतं यत् भारतस्य महासागरीय दृष्टौ सहैव जापानस्य मुक्त एवं प्रकट हिन्द प्रशान्त उपक्रमे च निकट समन्वयः सम्प्रति पूर्वस्मादपि अधिकम् आवश्यकं जातम्।
1: हम यह दोहराते हैं कि कठिन समय में भारत किसी भी जरूरी असिस्टेंस, रिलीफ और सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित है। हमारे दोनों देशों के संबंध साझे लोकतांत्रिक मूल्यों, परस्पर सम्मान और एक पुराने सिविलाइज्ड कनेक्ट पर आधारित हैं। अगले वर्ष हम अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस के 75 ईयर्स मनाएंगे और इन वर्षों के दौरान हमारी यह दोस्ती सिर्फ हमारे दोनों देशों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्टेबिलिटी, रेजिलियंस और रूल्स बेस्ड ऑर्डर का एक कॉर्नरस्टोन बन गई है।
0: जापानी रक्षा मंत्री कोइजुमी महोदयः कुमामोटो प्रान्ते आगतेन भूकम्पेन प्रभावितान् जनानालक्ष्य भारतेन प्रकटीकृतां संवेदनां प्रशंसितवान्। सः जापानी सामुद्रिक आत्मरक्षाबलस्य पोते दुरापन्नायाम् आपत्कालीन चिकित्सा स्थितौ भारतस्य नौसेनायाः सहायतायै कार्तज्ञं प्राकटयत्। अस्य वर्षस्य जुलाई मासे द्वयोः देशयोः शीर्षनेतृभ्यां निस्सारितस्य संयुक्त वक्तव्यस्य स्मरणं कुर्वन्तौ द्वावपि मन्त्रिणौ मुक्त तथा प्रकट हिन्द प्रशान्त क्षेत्रस्य निर्माणाय रक्षा सहयोगं सुदृढीकर्तुं स्वसंकल्पं पुनरुच्चारितवन्तौ। चेन्नई नगरस्य समीपे महाबलीपुरम नगरे केन्द्रीय गृहमन्त्रिणः अमितशाहस्य अध्यक्षतायां एकत्रिंशत्तमं दक्षिण क्षेत्रीय परिषदुपवेशनं सम्पन्नम्। अस्मिन् उपवेशने मुख्यमन्त्रिणः उच्चाधिकारिणश्च क्षेत्रस्य प्रगति विकास सम्बद्धेषु विषयेषु विस्तृत रूपेण विचार विमर्शम् अकुर्वन्। उपवेशने तमिलनाडुराज्यस्य मुख्यमंत्री जोसेफ विजयः, कर्णाटकस्य मुख्यमंत्री डीके शिवकुमारः, केरलस्य मुख्यमंत्री सतीशनः, तेलंगानायाः उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्कः, सहैव आंध्रप्रदेशस्य मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू इत्येते भागम् अगृह्णन्। एतैः सह पुदुच्चेरी राज्यस्य उपराज्यपालः, अण्डमान निकोबार द्वीप समूहस्य उपराज्यपालः, लक्षद्वीपस्य प्रशासकः अथ च विविध मन्त्रालयानां वरिष्ठाधिकारिणः अपि उपस्थिताः आसन्। उपवेशने उपस्थिताः सदस्याः स्वास्थ्य निधि वितरणम्, आधारभूत संरचना, पर्यावरण संरक्षणम् अथ च क्षेत्रीय सुरक्षा सम्बद्धेषु विषयेषु सहकारी संघीयतायाः महत्वे च बलं प्रदत्तवन्तः। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः वन्दे मातरमिति राष्ट्रिय गीतस्य सम्पूर्णगानस्य स्थाने केवलं पद्यद्वयस्य गानसन्दर्भे कांग्रेस कार्यसमित्याः निर्णयस्य तीव्रां निन्दां कृतवान्। वार्ताहरैः सह संलपन श्रीशाहः अकथयत् यत् एषः निर्णयः संसदा निर्मितस्य विधेः प्रत्यक्षम् उल्लङ्घनम् अथ च राष्ट्रविरोधि कृत्यं वर्तते। गृहमंत्री प्रतिपादितवान् यत् 37-29 शततमे वर्षे कांग्रेस पक्षेण तुष्टीकरणार्थं वन्दे मातरं गीतं भागद्वये विभक्तम्। श्रीशाहः आरोपितवान् यत् राहुल गांधिनः नेतृत्वे कांग्रेस दलं पुनः एकवारं तुष्टीकरणस्य मार्गम् अनुसरति।
2: मैं देश की जनता को अपील करना चाहता हूं कि एक बार इस देश ने गलती करी थी वंदे मातरम के दो टुकड़े होने देने की, और एक गलती के गंभीर परिणाम हमने भुगते हैं। अब देश की जनता एकजुट हो और कांग्रेस पार्टी के इस फैसले के खिलाफ आवाज बुलंद करे कि अब इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी। आजादी के 80 साल के बाद 1937 में जो फैसला कांग्रेस ने किया था, जिसको नरेंद्र मोदी जी ने सुधारा है, उसके सामने का कोई विरोध इस देश की जनता नहीं सहन करेगी।
0: संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। झारखण्ड उच्चन्यायालयः 11-13 जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षायाः अथ च खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियुक्तेः निरस्तीकरण सम्बन्धे राज्य सर्वकारस्य अधिसूचनायाम् अग्रिम आदेशपर्यन्तं स्थगनादेशं प्रायच्छत्। न्यायमूर्तिना दीपक रोशनेन याचिकानां श्रवणावसरे स्पष्टीकृतं यत् विधि

0: ഇനി 8:45 സമാചാര സന്ധ്യ, തുടർന്ന് ന്യൂസ് അറ്റ് 9 ഡൽഹി റിലേ.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया, मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित करने का निर्णय लिया. सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर में छात्र प्रदर्शनों के दौरान हिंसा की जांच के लिए 5 सदस्यीय समिति गठित की. झारखंड उच्च न्यायालय ने 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग और खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षाएं रद्द करने के राज्य सरकार के निर्णय पर रोक लगाई. सरकार ने 31 अक्टूबर तक 10 लाख टन कच्ची चीनी के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी. केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को वर्ष 2047 तक समावेशी और विश्व स्तरीय शहर बनाने के लिए मास्टर प्लान जारी किया. बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति निर्वाचित. और महिला हॉकी विश्व कप में इंग्लैंड के साथ गोल रहित ड्रॉ खेलने के बाद भारत ने दूसरे दौर में प्रवेश किया. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित करने को स्वीकृति दे दी है. गृह मंत्री अमित शाह ने आज सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी घोषणा की. उन्होंने कहा कि इस निर्णय से लद्दाख के दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के लिए न्याय तक पहुंच आसान हो जाएगी. श्री शाह ने कहा कि सरकार लद्दाख के सर्वांगीण विकास और संवैधानिक सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व न्यायाधीश आर सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की है. हमारे संवाददाता ने बताया है, ये समिति पिछले महीने नई दिल्ली के जंतर मंतर और देश की अन्य जगहों में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के आरोपों की स्वतंत्र जांच करेगी.
2: समिति में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा, दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश शैलेंद्र कौर, सीबीआई के पूर्व निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक एलआर बिश्नोई भी शामिल होंगे. मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायाधीश जॉय माल्या बागची और न्यायाधीश वी मोहना की खंडपीठ ने कहा कि उच्च स्तरीय जांच समिति कुछ मुद्दों पर प्राथमिकता के आधार पर काम करे, जिनमें सबसे अहम मुद्दा महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लक्षित हिंसा और छेड़छाड़ की कथित घटनाओं से जुड़ा है. अदालत ने समिति से कहा कि वो मुद्दों का लगातार और समय समय पर आकलन करे और अपनी अंतरिम रिपोर्ट समय पर सौंपे. समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा.
1: सर्वोच्च न्यायालय ने विद्यार्थियों के लिए सीबीएसई की त्रिभाषा नीति के कई पहलुओं पर सवाल उठाए हैं. इनमें पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों की उपलब्धता, विद्यार्थियों पर बोझ और स्कूलों में इस नीति को लागू करने का तरीका शामिल है. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायाधीश न्यायमूर्ति जय माल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए सीबीएसई की त्रिभाषा नीति को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी. झारखंड उच्च न्यायालय ने आज 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा और खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा के अंतर्गत नियुक्तियों को रद्द करने के झारखंड सरकार के निर्णय पर रोक लगा दी है. न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक रोशन ने सरकार की परीक्षा रद्द करने की अधिसूचना को चुनौती देने वाली 3 अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया. एक रिपोर्ट.
3: न्यायालय ने निर्देश दिया कि चुने गए उम्मीदवारों को बहाल किया जाए. न्यायालय ने कहा कि उचित प्रक्रिया और न्याय के सिद्धांतों का पालन किए बिना उन्हें हटाया नहीं जा सकता. न्यायालय ने राज्य सरकार और झारखंड लोक सेवा आयोग से जवाब मांगा है. मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी. 2 याचिकाएं 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा और नियुक्तियों को रद्द करने को चुनौती देती है, जबकि 3री याचिका खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा से संबंधित. याचिकाकर्ताओं के अनुसार 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा के जरिए चुने गए 342 उम्मीदवार अभी नौकरी कर रहे हैं. झारखंड सरकार ने 22 परीक्षाओं को रद्द करने, 6 परीक्षा प्रक्रियाओं को रोकने और 17 परीक्षाओं को जांच के दायरे में लाने की अधिसूचना जारी की थी. समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी.
1: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक में देश के विकास में

0: दक्षिण भारत के योगदान की सराहना की है। तमिलनाडु के महाबलीपुरम में बैठक को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि दक्षिण भारत ने देश के सूचना प्रौद्योगिकी, ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल्स और अवसंरचना विकास के सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि दक्षिण में भारी मात्रा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी आया है।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दक्षिण भारत की संपूर्ण विकास यात्रा 3 स्तंभ, उच्च साक्षरता दर, प्रशिक्षित मानव संसाधन और गहरे समुद्र के उपयोग में तकनीकी विशेषज्ञता पर टिकी है। इन्हीं 3 स्तंभों ने दक्षिण भारत को देश के विकास में सबसे बड़ा योगदानकर्ता बनाया है। उन्होंने कहा कि 2014 से क्षेत्रीय परिषद को एक सार्थक मंच में बदलने के प्रयास किए जा रहे हैं। श्री शाह ने बताया कि उत्तर भारत में नदी जल बंटवारे से संबंधित 8 मुद्दों में से 5 मुद्दे ब्रिटिश काल से पहले से ही चले आ रहे थे। उन्होंने कहा कि ब्रह्मपुत्र से लेकर कावेरी और गोदावरी तक प्रमुख नदियों को जोड़ने से यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि भारत को अगले 100 वर्षों तक पानी की कमी का सामना न करना पड़े। चेन्नई से आर चिदम्बर नाथन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने इस वर्ष 31 अक्टूबर तक 10 लाख मीट्रिक टन कच्ची चीनी के शुल्क रहित आयात को अनुमति दे दी है। महानिदेशक विदेश व्यापार ने आज जारी एक सूचना में कहा कि कुछ शर्तों के साथ 10 लाख मीट्रिक टन कच्ची चीनी का शुल्क के बगैर आयात किया जा सकेगा। ये फैसला त्योहारों के मौसम से पहले लिया गया है, जब आम तौर पर चीनी की मांग बढ़ जाती है। घरेलू बाजार में आपूर्ति को लेकर चिंता के बाद ये निर्णय लिया गया। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है। सरकार ने आज दिल्ली मास्टर प्लान 2047 का अनावरण किया। ये प्लान दिल्ली को पर्यावरण अनुकूल और समावेशी राजधानी बनाने के लिए दीर्घकालिक ढांचा प्रदान करता है। वर्ष 2047 तक विकसित भारत की परिकल्पना के अनुरूप दिल्ली मास्टर प्लान का उद्देश्य राजधानी को विश्व स्तरीय, समावेशी और आर्थिक रूप से जीवंत शहर बनाना है।
2: दिल्ली मास्टर प्लान 2047 में 2 तरीके अपनाए गए हैं। मौजूदा विकसित क्षेत्रों के लिए क्षेत्र आधारित पुनर्विकास और नए विकसित होने वाले क्षेत्रों के लिए सड़क मार्ग आधारित योजना। मौजूदा क्षेत्रों में परिवहन केंद्रित विकास, मिश्रित उपयोग वाली जगहों और बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने पर ध्यान दिया जाएगा। वहीं नए क्षेत्रों में जुड़े हुए सड़क नेटवर्क विकसित किए जाएंगे। इसके लिए लैंड पूलिंग और कम घनत्व वाले क्षेत्रों का उपयोग किया जाएगा। इन दोनों तरीकों से जमीन का बेहतर उपयोग, शहर के अंदर और दूसरे शहरों से बेहतर संपर्क तथा टिकाऊ और व्यवस्थित विकास सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। इस योजना में लोगों को शहरी विकास के केंद्र में रखा गया है। इसमें खास तौर पर युवाओं, महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों की जरूरतों और उनकी आकांक्षाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने दिल्ली मास्टर प्लान 2047 का आज अनावरण किया। ये प्लान दिल्ली को पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए तैयार किया गया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आने वाले वर्षों में राष्ट्रीय राजधानी में लगभग 30 से 40 लाख नए फ्लैट जोड़े जाएंगे। इसका उद्देश्य शहर की विशाल आबादी की आवास मांग पूरा करना है। भारत और जापान ने रक्षा सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। नई दिल्ली में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी की बैठक में यह निर्णय लिया गया। दोनों देशों के बीच समुद्री सुरक्षा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जापान के कुमामोतो में आए भीषण भूकंप पर भारत की संवेदना और एकजुटता व्यक्त की।
3: दोनों देशों के संबंध साझे लोकतांत्रिक मूल्यों, परस्पर सम्मान और एक पुराने सिविलाइज्ड कनेक्ट पर आधारित हैं। अगले वर्ष हम अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस के 75 इयर्स मनाएंगे और इन वर्षों के दौरान हमारी यह दोस्ती सिर्फ हमारे दोनों देशों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्टेबिलिटी, रेजिलियंस और रूल्स बेस्ड ऑर्डर का एक कॉर्नर स्टोन बन गई है।
0: श्री कोइजुमी ने कुमामोतो में भूकंप से प्रभावित लोगों के प्रति भारत की संवेदना पर आभार व्यक्त किया। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लागू कर रहा है। इसका उद्देश्य देश में ग्रीन हाइड्रोजन का एक मजबूत तंत्र बनाना है और भारत को इसके उत्पादन तथा निर्यात के लिए एक संभावित ग्लोबल हब के तौर पर स्थापित करना है। इस मिशन को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनवरी 2023 में स्वीकृति दी थी। इसके लिए 2029-30 तक की अवधि के लिए शुरुआती तौर पर 19,744 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में एनटीपीसी नवीकरणीय ऊर्जा के कार्यकारी निदेशक डीएमआर पांडा ने बताया कि अभी हाइड्रोजन से चलने वाली 5 बसों में हाइड्रोजन

0: This is Akashvani. Good evening and welcome to Market Mantra. And with me is my co-anchor in Hindi, Nikhil Kumar.
1: नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र कार्यक्रम में कारोबारी खबरों के साथ एक बार हम फिर से हाजिर हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक के मुख्य आर्थिक समाचारों पर।
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक स्टॉक मार्केट इंडिसेस रीबाउंड, सेंसेक्स जंप

0: jumps over 600 points. Nifty settles above 24,200. India's core industries grow by 5.4% in July this year on an annual basis, and global crude oil prices rise over 3%.
1: घरेलू शेयर बाजार आज बढ़त के साथ बंद हुए. सेंसेक्स में 600 से अधिक अंकों का उछाल और निफ्टी 24,200 से ऊपर पहुंचा. भारत के औद्योगिक सूचकांक में वार्षिक आधार पर इस साल जुलाई में 5.4% की बढ़त और वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में 3% से अधिक की तेजी आई.

0: And before we take our main stories in detail, here is an important disclaimer. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: और बढ़ते हैं अब खबरों की तरफ. घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक आज कई दिन बाद बढ़त के साथ बंद हुए, जिसमें सभी सेक्टर में व्यापक खरीदारी देखी गई. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 0.82% यानी 628 अंक बढ़कर 77,538 पर पहुंच गया. निफ्टी 0.64% यानी 154 अंक ऊपर चढ़कर 24,232 पर बंद हुआ. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के व्यापक बाजार में मिड कैप सूचकांक में 0.4% की बढ़त हुई, जबकि स्मॉल कैप सूचकांक 0.7% ऊपर आ गया. सेंसेक्स ने लगातार 4 दिनों की गिरावट का सिलसिला तोड़ा, जबकि निफ्टी ने लगातार 7 दिनों की गिरावट का ट्रेंड खत्म किया. इससे पहले अमरीकी बॉन्ड यील्ड में गिरावट के बाद बाजार गैप अप के साथ खुले. दोनों सूचकांक ज्यादातर समय तक एक दायरे में ही कारोबार करते रहे.
0: Benchmark domestic equity indices ended in positive territory today, supported by broad-based buying across sectors. Sensex surged by 628 points, or 0.82%, to close at 77,538. Nifty climbed 154 points, or 0.64%, to settle at 24,232. In the broader market, at the National Stock Exchange, the mid-cap 100 index gained 0.4%, while the small-cap 100 index increased by 0.7%. Sensex curbed its four-day losing streak, while Nifty snapped its seven-day downward trend. Earlier, the markets opened with a gap up following a decline in U.S. bond yields. Both the stock market indices traded within a range for most of the session before ending with favorable gains.
1: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 26 कंपनियों के शेयरों में आज बढ़त देखी गई. सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली कंपनियों में एटर्नल ने 2.3%, कोटक महिंद्रा बैंक और आईटीसी ने 1.6% और बजाज फाइनेंस ने 1.5% की बढ़त दर्ज की. वहीं दूसरी तरफ टाटा स्टील में 0.4%, इंडिगो और एचसीएल टेक में लगभग 0.2% की गिरावट आई, जबकि टाइटन में मामूली सुस्ती देखी गई.
0: In the sectoral indices on the Bombay Stock Exchange, all the sectors registered gains except hospitals, which dropped by 0.6%. Among the top gainers, realty climbed 1.9%, FMCG as well as Focus IT gained 1%, and IT added 0.9%. The overall market breadth at the Bombay Stock Exchange was positive, as shares of 2,450 companies advanced, 1,874 companies declined, and 225 companies remained unchanged.
1: अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 5 पैसे मजबूत होकर 95.71 रुपए पर बंद हुआ. डॉक्टर एसपी शर्मा, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है.
2: जी शुक्रिया.
1: एसपी, अगर आज के मार्केट को हम देखते हैं तो कई दिनों की गिरावट का सिलसिला टूटा है. सेंसेक्स और निफ्टी में एक ऐसी बढ़त देखी गई जिसने जरूर निवेशकों को राहत पहुंचाई होगी. आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे बड़े कारण रहे जिनकी वजह से हमें यह बदलाव देखने को मिला?
2: देखिए, ग्लोबली तो बहुत ही अनसर्टेनिटीज हैं जो मार्केट के किसी भी पक्ष में फेवर में नहीं है. क्रूड ऑयल प्राइसेस काफ़ी हाई स्प्रे में है, और यूएस का जो टसल है ईरान के साथ उसमें भी जो वो बरकरार है. लेकिन इस दौर में जो भारत में जो इक्विटी का जो अभी हमने देखा कि एक स्ट्रांग रिबाउंड देखा है, तो उसके पीछे एक तो हमारा जो हमारी जो कॉरपोरेट अर्निंग्स हैं, और दूसरा जो हमारे फंडामेंटल्स हैं, और तीसरा जो एक स्टेबिलिटी हमने देखी है कि इन्फ्लेशन में भी, कि आने वाले टाइम में शायद जो रेट पॉज है वो कंटिन्यू रहेगा, कोई ऐसी संभावना हम नहीं देखेंगे कि इन्फ्लेशन में बढ़ोतरी हो, क्योंकि इन्फ्लेशन जो

0: वो एक पहले एक्सपेक्टेड था कि भाई शायद ये 6%, 5%, 6% उससे ऊपर चला जाएगा जिस तरीके के क्रूड के प्राइसेस बढ़ रहे थे. लेकिन अभी उनमें भी जो इन्फ्लेशन ट्राजेक्टरी है वो बहुत ही स्लोली स्लोली वो सेटल हो रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है. तो ओवरऑल जो मार्केट्स है वो एक कंसोलिडेटिंग मोड में है, और जिसमें जो बायस है अपवर्ड बायस है, जो मार्केट्स है वो किसी भी अच्छी न्यूज़ के ऊपर ऊपर जाना चाहते हैं. लेकिन जो ग्लोबल हेडविंड्स हैं वो मार्केट को काफी प्रभावित करती है, जिससे मार्केट अपना एक पोटेंशियल ट्राजेक्टरी नहीं ले पाती है. तो कुल मिला के जो मार्केट्स हैं वो एक रेंज बाउंड स्थिति में है. मार्केट जाके 25,000 के लगभग जाके फिर उनमें कुछ करेक्शन शुरू होती है, फिर लगभग कोई जब 24 से नीचे खिसकने लगती हैं तो फिर वापस कोई रीबाउंड आता है. तो एक ये जो 1,000-1,500 का जो एक रेंज है निफ्टी में, वो मार्केट को सपोर्ट कर रहा है और मार्केट को वापस उसी दरमियान रखे हुए है.
1: इसमें प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है आगे चल करके?
0: देखिए, इसमें प्रॉफिट बुकिंग ऑलरेडी जो हो रही है, कंसोलिडेशन मोड में है, प्रॉफिट बुकिंग होती है, चर्निंग होती है. एक सेक्टर से निकल के लोग दूसरे में जाते हैं, और कई बार ब्लू चिप से निकल के स्मॉल कैप में जाते हैं, स्मॉल से निकल के ब्लू चिप में जाते हैं. तो मार्केट की जो कंडीशंस हैं, जो उस टाइम पे एक बढ़त आती है कि कई बार बहुत सारे जो ब्लू चिप्स हैं बहुत अच्छे चलते हैं, तो लोग प्रॉफिट बुक करके अपना कुछ मिड कैप पर रुक करते हैं. तो इस तरीके से मार्केट का जो ये 1,000-1,500 के निफ्टी का जो अभी पीछे हम 1-1.5 साल से देख रहे हैं कि उसी रेंज में मार्केट घूम रही है,
1: जी
0: तो ये एक तरीके से लोगों का कॉन्फिडेंस भी बिल्ड कर रही है कि मार्केट में कोई मेजर करेक्शन, इतने हालात खराब होने के बावजूद भी ग्लोबल लेवल पे कोई मेजर करेक्शन नहीं आई है. मार्केट में एक संतुलन बना रहा. जब मार्केट्स नीचे जाती हैं तो कोई कुछ पॉजिटिव्स आते हैं तो मार्केट्स वापस रिबाउंड कर लेती हैं. जब मार्केट्स ऊपर जाती है तो कुछ ना कुछ उधर अनाउंसमेंट आ जाता है, ट्रंप साहब की वजह से कुछ ऐसी अनाउंसमेंट आती है जो यूएस ईरान के बीच में टसल चल रही है
1: जी
0: उसको लेके, और नेगेटिव कोई न्यूज़ आती है तो मार्केट्स वहां पे करेक्शन खा जाती है. तो कुल मिला के जो स्थिति है वो एक मैं ये कहूंगा कि एक वॉलेटिलिटी बट बैलेंस्ड अप्रोच.
2: ओके डॉक्टर शर्मा, द रिबाउंड दैट यू मेंशन्ड इज आल्सो शॉर्ट कवरिंग इन द मार्केट्स आफ्टर अ 4-day लूजिंग स्ट्रीक. वी सॉ अगेन एन अपराइज इन द मार्केट्स टुडे. DIIs were the net buyers to the tune of 3,538 crore rupees in the equity indices. The story also says that there was a pullback in the US Treasuries after a fall yesterday. So we're talking about the 10-year yield on the US bond. You have the bill notes and bonds, 1 to 6 months, the short-term Treasuries, 1 to 2 years as well. There was a pullback today. What is the impact of what's going on in the bond market in the US having on India and India's stock market? Because the national debt of the US has already crossed $40 trillion. So how do you see the hedge funds looking at India? They're still the net sellers, but it has an impact on the way our stock market is moving.
0: Yes, Arjun, because US market is not that much stable. Extreme volatility is existing because of the dwindling fundamentals. Sometimes the inflation becomes very sticky at the higher level and the growth is decelerating, and bond prices are very, very volatile, and dollar index is also volatile. So market in US is not taking any strong direction either side. But this volatility in the treasury and rebound because of the announcement that there may be some rise in the interest rate in the coming times, as majority of the people are in favor of increasing the interest rate. So again, the bond yields are becoming strong, and that's why the volatility is observed in the market. So nothing is stable in the US market, either the fundamentals of the economy, like their manufacturing growth or the employment creation. These things are not stable. These are very volatile month after month. So creating a confusion or uncertainty in the minds of the investors. So that's why no direction is there from the US market, but remains extremely volatile. And going forward, I believe the market mood will remain volatile because there is no discussion on peace between Iran and US.

0: ट्रैजेक्टरी में आए हैं, लेकिन जो खास करके जो ऐसा जो ऑयल और रिफाइनरी की बात है, तो आप देख ही रहे हैं कि ग्लोबल लेवल पे कितना टसल है और क्रूड के प्राइसेस जो है बहुत ही वॉलेटाइल रहते हैं, तो कभी टाइम बहुत अपॉर्चून होता है कि हम रिफाइनरी मार्जिन ज़्यादा इंक्रीज होते हैं तो उसका प्रोडक्शन भी इंक्रीज होता है, और कई बार जो प्राइसेस बहुत हाई लेवल पर प्रिवेल करते हैं तो ज़्यादा कॉस्टली बाय करना भी फिर वो भारी पड़ता है, तो उस वजह से जो एक बैलेंस है वो हम समझते हैं कि तो उसमें वॉलेटाइल रहेगा, उसमें ग्रोथ जो है वो हम एक सस्टेंड ग्रोथ नहीं दे सकते उसमें जब तक कि क्रूड के प्राइसेस बहुत, अभी आप देखिए कि क्रूड के प्राइसेस पीछे $55 से लेके 100 से ऊपर जा चुके, डबल और उसके बीच में क्रूड प्राइसेस ने पीछे 4-5 महीने में बिहेव किया है, तो इसकी वजह से जो जो रिफाइनिंग प्रोसेसेस हैं उसके ऊपर भी उतना ही इम्पैक्ट जो है आता है।
1: डॉक्टर शर्मा, वी हैव आल्सो सीन दैट देयर इज स्टिल इम्पैक्ट फ्रॉम व्हाट्स हैपनिंग इन द मिडल ईस्ट, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ब्लॉकेड, बिकॉज फर्टिलाइजर प्रोडक्शन यू नीड सल्फर इम्पोर्ट्स फॉर क्रूड ऑयल of course, and natural gas, we rely on the Middle East for crucial imports for our refineries. But the weightage of fertilizer, crude oil, and natural gas is still 15% of the ICI, whereas the remaining 85% includes iron ore, cement, electricity generation, coal production, steel, and refinery products. And all of that has seen a great increase in its output, which is why we are seeing 5.4% increase in the July figures for the index of core industries.
0: Yes, Arjun, you are right, because some sectors have increased very significantly, more than 30-40%, and that's why their weight is also high, as these refinery and crude, they have only 15-16%. So rest of the 85% is growing significant. That's why the growth is coming at 5.4%, which is a great number in the volatile global environment.
1: And the index of industrial production, the factory output, actually went up by 7% last month also. So along with core industries data and IIP, fundamentally the economics of the country in terms of commodities and using the commodities to manufacture and produce final goods is also there.
0: Yes, Arjun, there is a great balance between all the fundamentals, like IIP numbers are growing at 7% and core infra at 5.4%, and exports, which is very, very important for the growth of the economy and a great correlation with the GDP. Exports are increasing at the rate of 13% during the last 4 months. The average is 13%. Last month in July, merchandise exports grew more than 17-18%. So this is the great growth in our external sector, in our exports, despite the global headwinds, and we are becoming more and more competitive in the global market, and demand for India's products is increasing significantly in the many countries.
2: एशियाई शेयर बाजारों में आज दक्षिण कोरिया का कोस्पी 5.9% के लाभ में था। जापान का निक्केई 1.4% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। आर्थिक मोर्चे पर जापान का निर्यात पिछले महीने 23.2% बढ़ा, जबकि सालाना आधार पर आयात में 27.8% की वृद्धि हुई। आंकड़ों के अनुसार पिछले महीने देश का व्यापार घाटा 634.5 अरब येन रहा। इस खबर से जुड़े दो सवाल हैं। पहला तो ये कि दक्षिण कोरिया का जो मार्केट है उसमें उतार चढ़ाव काफी एक अलग तरीके से ही हम देख रहे हैं पिछले कुछ समय से, 1-2 महीने से, और साथ ही जापान से जो सालाना आधार पर आयात में बढ़ोतरी का आंकड़ा आया है, ये काफी कुछ कहता है।
0: जी बिल्कुल, आप सही बता रहे हैं, क्योंकि जो एशिया में कुछ ऐसा वॉलेटिलिटी है अभी, कुछ कई बार जो इंडिसेस हैं बहुत तेज गति से आगे बढ़ते हैं, कई बार बहुत गिरावट आती है, क्योंकि जो ग्लोबल लेवल पे एशिया एक मेजर सप्लायर है, जब जो टर्म्स ऑफ ट्रेड या फिर आप कहेंगे कि जो नेगोशिएशंस है या फिर टैरिफ स्ट्रक्चर है उसमें कुछ भी ऐसे बदलाव की घोषणा होती है, तो उससे मार्केट्स के ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है, बिकॉज दे आर द मेजर सप्लायर्स टू द एडवांस्ड इकोनॉमीज। सो उसकी वजह से जो हम देखते हैं कि वॉलेटिलिटी, कभी हम दक्षिण कोरिया के इंडेक्स में देखते हैं, या कभी फिर हम इधर जापान के उसमें देखते हैं, या फिर चाइना में देखते हैं, या और जो एशियन कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग इंडिया ऑल्सो, तो जैसे मैंने पहले बताया कि पोटेंशियल हमारे, ये जो सभी इमर्जिंग मार्केट्स हैं इनमें पोटेंशियल बहुत अच्छा है, लेकिन जो ग्लोबल लेवल पे जो हेडविंड्स हैं, जो टसल है, उसकी वजह से ग्रोथ काफ़ी लेवल तक अंडरमाइन हुई है। जो मैं समझता हूँ कि जैसे ही पीस एस्टेब्लिश होगा तो इन मार्केट्स में बहुत तेज गति से रिबाउंड करने की समर्था है।
1: डॉक्टर शर्मा, दी

0: structural mode, structural revival, and growth is also inching up slowly, slowly. And going forward, I believe this structural shuffle will benefit the Japanese economy, because they are now connecting with the many global markets, and to increase the trade trajectory and to become once again prominent in the global trade. So I think in the coming times that will become visible, and economy will rejuvenate to the next level.
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ एक बड़े आर्थिक युद्ध की घोषणा की है. उन्होंने उन देशों और कंपनियों पर कड़े आर्थिक प्रतिबंधों की चेतावनी दी है जो ईरान का सहयोग करना जारी रखेंगे. राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि उन्होंने ईरान को समझौता करने के लिए कई मौके दिए थे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया. श्री ट्रंप ने कहा कि अमरीका अब ईरान को अलग थलग करने का अभियान शुरू करेगा. उन्होंने कहा कि जो भी देश अपने वित्तीय संस्थानों, व्यवसायों, हवाई अड्डों या फिर सरकारी एजेंसियों से ईरान की मदद करेगा उसे भारी आर्थिक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा. ट्रंप ने यह भी कहा कि इस अभियान का मकसद विदेशों में गतिविधियों के लिए ईरान के वित्त पोषण और सहयोग करने की क्षमता को कमजोर करना है. इस बीच ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघेरी गालिबाफ ने कहा कि जब तक अमरीका 14 सूत्रीय ज्ञापन के तहत किए गए वायदों को पूरा नहीं करता, तब तक ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मोज को फिर से नहीं खोलेगा. एसपी, इस बड़ी खबर पर आपके क्या विचार होंगे? क्या असर देखने को मिलेगा? मार्केट कैसा परफॉर्म करेगा?
0: देखिए, मैं समझता हूं कि कोई भी कंट्री आइसोलेशन में ऑपरेट नहीं करता है. नाउ वी आर इन अ ग्लोबली इंटीग्रेटेड वर्ल्ड. तो अगर यूएस ऐसा कदम उठाता है कि किसी कंट्री का आइसोलेट करने का, तो उसका पूरे ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर भी प्रभाव होगा. अभी हम देख ही रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक उस जगह की वजह से पूरा वर्ल्ड इम्पैक्टेड है, क्रूड प्राइसेस की वजह से. और अगर ऐसी सैंक्शंस आती हैं तो उनका भी प्रभाव जो है वो किसी एक कंट्री के ऊपर नहीं होगा, वो पूरा विश्वव्यापी होगा, पूरे विश्व के ऊपर उसका इम्पैक्ट आएगा. और यूएस भी उसमें से पीछे नहीं है, मतलब यूएस भी उसमें शामिल है. यूएस इज ऑल्सो नॉट आइसोलेटेड के और इंसुलेटेड के भी उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं आएगा. सब पूरा ग्लोबल इकोनॉमी इम्पैक्ट होगा. जैसे ट्रंप साहब ने बात की है कि ऐसी सैंक्शंस होंगी कि हम उसको अलग थलग कर देंगे, सो दैट इट्स नॉट पॉसिबल फॉर ए ग्लोबली इंटीग्रेटेड इकोनॉमी जहां पे सप्लाई चेन्स बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड है.
1: लेकिन मध्य पूर्व में वे हालात कुछ ऐसे बन रहे कि ईरान वैसे ही अलग थलग सा नजर आ रहा है.
0: देखिए, वो युद्ध की वजह से जब भी कोई कंट्री प्रभावित होता है तो अलग थलग नजर आता है, बट अगर आप इकोनॉमिक लिंकेजेस देखेंगे तो वो बहुत स्ट्रांग होते हैं. हम किसी भी कंट्री को ऐसे उसके ग्रोथ को अंडरमाइन नहीं कर सकते. तो मैं समझता हूं कि ऐसी अनाउंसमेंट्स दीज आर नॉट इन फेवर ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी. यूएस इज द लार्जेस्ट इकोनॉमी एंड यूएस इज अ रिस्पॉन्सिबल इकोनॉमी विच प्रोवाइड्स द डायरेक्शन टू द वर्ल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ. सो उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ही आगे के जो डिसीजन है लेना चाहिए.
2: मूविंग ऑन टू द ग्लोबल क्रूड ऑयल मार्केट, ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस रोज ओवर 3% टूडे. ब्रेंट क्रूड वॉज ट्रेडिंग 3.3% अप एट $94.61 पर बैरल इन इंट्राडे ट्रेड. West Texas Intermediate crude was trading 3.4% up at $88.77 per barrel when reports last came in.
1: चौथी भारत सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज बैठक आज सिंगापुर में आयोजित हुई. वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने इस बैठक में हिस्सा लिया. इस दौरान डिजिटल तकनीक, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संचालन और साइबर सुरक्षा जैसे रणनीतिक तथा उभरते क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की गई. वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डिजिटल कौशल विकास में सहयोग को नई गति देने पर भी बातचीत हुई है. बैठक में उन्नत विनिर्माण, फिनटेक, डिजिटलीकरण, स्वास्थ्य और सतत विकास के क्षेत्रों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी को सशक्त करने पर बल दिया गया है. और अब सराफा बाजार की बात करें तो भारत में 24 कैरेट सोना आज 2.1% के उछाल के साथ 1,57,080 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था, और चांदी 3.7% ऊपर चढ़कर 2,37,766 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी. एसपी, भारतीय सराफा बाजार में गोल्ड और सिल्वर पर जो उछाल आया, इस पर आप क्या कहेंगे?
0: देखिए, एक तो अर्जुन ने जैसे पहले बताया, डॉलर का वीकनेस जो ट्रेजरी में भी डिक्लाइन था, तो जिस वजह से डॉलर वीक चल रहा था, डॉलर इंडेक्स, तो गोल्ड में उछाल आना स्वाभाविक था. और दूसरा, गोल्ड एक जो इंटरनेशनल गोल्ड प्राइसेस है वो 4,000 का लो स्तर छू के वापस एक रिबाउंड आया. जो सेंट्रल बैंक्स है वापस वो दे आर इन द बाइंग स्प्री. तो एक बढ़त आई है जो मैं समझता हूँ कि बरकरार रह सकती है. और गोल्ड का जो पहले ये 55

0: सौ का एक बेंचमार्क बना चुका है ग्लोबल लेवल पे, 5,500 डॉलर पर ट्राई ऑन्स। तो अभी 4,500 है तो काफी स्कोप है, लेकिन
1: जी
0: यहाँ पे भी कंसोलिडेट करता है तो
1: जी
0: काफी ऊपर ही।
1: डॉक्टर एसपी, कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और महत्वपूर्ण चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी शुक्रिया, थैंक यू।
2: एंड बिफोर वी क्लोज द रिमाइंड ऑफ द हेडलाइंस, बेंचमार्क डोमेस्टिक स्टॉक मार्केट इंडिसीज रीबाउंड, सेंसेक्स जंप्स ओवर 600 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स अबव 24,200, इंडिया कोर इंडस्ट्रीज ग्रो बाय 5.4% इन जुलाई दिस ईयर ऑन एन एनुअल बेसिस, एंड ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस राइज ओवर 3%। एंड दैट्स इट इन दिस एडिशन ऑफ मार्केट मंत्र फॉर नाउ, गुड बाय।
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम गीत मेरे मनमीत में आपका स्वागत है। अभी आपके साथ है आपका दोस्त शमीम।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में केंद्र सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में देश के बुनियादी ढांचे, संपर्क, सुरक्षा, विदेश नीति और सुशासन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से देश के भविष्य को ध्यान में रखते हुए दूरगामी योजना बनाने को कहा। उन्होंने कहा कि सरकारी विभागों के बीच बेहतर तालमेल जरूरी है। श्री मोदी ने डेटा के सही इस्तेमाल पर जोर दिया और इसे देश की महत्वपूर्ण संपत्ति बताया। उन्होंने कहा कि विभागों के बीच सोचने और काम करने के तरीके में सुधार होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने सरकारी विभागों, विश्वविद्यालयों और युवाओं के बीच बेहतर संवाद पर जोर दिया ताकि नीतियां बनाने में नए विचार शामिल हो सकें। उन्होंने देश के रक्षा उद्योग को मजबूत बनाने और उसे वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ाने पर भी जोर दिया। कोविड महामारी और पश्चिमी एशिया संकट का उदाहरण देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अलग अलग विभागों के बीच बेहतर तालमेल सरकार की कामकाज की संस्कृति का हिस्सा बनना चाहिए। प्रधानमंत्री ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के बेहतर इस्तेमाल की भी बात कही। उन्होंने कहा कि AI के साथ मानवीय विशेषज्ञता और निगरानी भी जरूरी है।

0: जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बैठक में भारत और जापान के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों की साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने रक्षा क्षेत्र में जापान की कंपनियों और स्टार्टअप्स के साथ मिलकर काम करने, खासकर रक्षा उपकरणों के विकास और उत्पादन में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर भी चर्चा की। जापान के रक्षा मंत्री ने दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग में हुई प्रगति की जानकारी दी और संबंधों को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित करने को मंजूरी दे दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कल सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से लद्दाख के दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के लिए न्याय तक पहुंच आसान होगी। श्री शाह ने कहा कि सरकार लद्दाख के सर्वांगीण विकास और संवैधानिक सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व न्यायाधीश आर सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की एक उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की है। हमारे संवाददाता ने बताया कि यह समिति पिछले महीने नई दिल्ली के जंतर मंतर और देश के अन्य जगहों में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के आरोपों की स्वतंत्र जांच करेगी।
1: समिति में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा, दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश शैलेंद्र कौर, सीबीआई के पूर्व निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक एलआर बिश्नोई भी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायाधीश जॉय माल्या बागची और न्यायाधीश वी मोहना की खंडपीठ ने कहा कि उच्च स्तरीय जांच समिति कुछ मुद्दों पर प्राथमिकता के आधार पर काम करे, जिनमें सबसे अहम मुद्दा महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लक्षित हिंसा और छेड़छाड़ की कथित घटनाओं से जुड़ा है। अदालत ने समिति से कहा कि वो मुद्दों का लगातार और समय समय पर आकलन करे और अपनी अंतरिम रिपोर्ट समय पर सौंपे। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाम्बिया के राष्ट्रपति हाकाइंडे हिचिलेमा को दोबारा राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पर पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत जाम्बिया के साथ अपने मजबूत और बहुआयामी संबंधों को बहुत महत्व देता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे भारत जाम्बिया संबंधों को और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति हिचिलेमा के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हैं। नई दिल्ली में जारी विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने मलेशिया के जुनैद आरिफ और रॉय किंग याप की जोड़ी को 21-23, 21-19, 21-17 से हराया। अब इनका मुकाबला तीसरी वरीयता प्राप्त चीन के लियांग वेई किंग और वांग चांग से होगा। नीदरलैंड्स के एम्स्टरडैम में एफआईएच महिला हॉकी विश्व कप में कल भारत और इंग्लैंड का मुकाबला गोल रहित बराबरी पर रहा। इस ड्रॉ के बाद भारतीय टीम टूर्नामेंट के अगले दौर में पहुंच गई है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय आशीष पी एब्राहम। Prime Minister Narendra Modi chaired the third high-level meeting with secretaries to the Government of India at his residence yesterday and discussed the future action agenda of ministries and departments dealing with infrastructure and connectivity, security and external affairs, and governance. He urged secretaries to think with a long-term perspective on how the country's future should be shaped. Highlighting the importance of informal interaction and building team spirit among officers, Mr. Modi called for greater engagement between government departments, universities and young people to bring fresh perspectives in policy making. During the meeting, the secretaries shared their experiences on sectoral priorities, emerging challenges and implementation issues. Cabinet Secretary, secretaries of key ministries and departments and senior officials from the PM's office attended the meeting. Japan's Minister of Defense Shinjiro Koizumi, who is on an official visit to India, called on PM Modi yesterday. During their meeting, Mr. Modi shared his vision for further strengthening the special strategic and global partnership between India and Japan and highlighted the importance of India-Japan defense and security cooperation in furthering peace, stability and prosperity in the Indo-Pacific and beyond. The PM outlined opportunities for Japan to partner

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर निशिगंधा लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा

आप सुन रहे हैं निशिगंधा और निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयती। एक बड़ी सुंदर सी बात है कि दिन भर सबके हिस्से की चिंता करते करते कभी अपने हिस्से का आसमान भी देख लिया कीजिए। हर रिश्ता जरूरी है मगर खुद से जो रिश्ता है वो सबसे पुराना है। किसी के चले जाने से या किसी के ना होने से हमारी कहानी खत्म नहीं होती। कुछ लोग एक चैप्टर की तरह होते हैं पर वो पूरी किताब नहीं होते और कुछ मुलाकातें प्रेम से अधिक एक सीख भी दे जाती हैं। रात इसलिए खूबसूरत है कि यह दिन की थकान नहीं अपने भीतर लौटने का बहाना देती है। अपने सपनों को उम्र की चौखट पर मत रोकिए। जिस दिल ने सबको संभाला है उसे भी सहलाने का हक है। कल फिर नई सुबह होगी मगर आज की रात भी आपकी है। कहते हैं ना कि सबको बांटते रहे हम उम्र भर अपनी रोशनी। सबको बांटते रहे हम उम्र भर अपनी रोशनी। एक दिया अपने लिए भी जलाना चाहिए। एक दिया अपने लिए भी जलाना चाहिए। और अगला गीत फिल्म का नाम है दयावान। आइए सुनते हैं ये गीत।

एक बात जो अक्सर हम दोहराते हैं और लगभग हर 3-4 कार्यक्रम के बाद हम आपसे ये साझा करते हैं कि इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम होता है प्रेम को लिखना, और सबसे आसान काम भी होता है प्रेम को लिखना। वो कहते हैं कि प्रेम को हम जितने भी शब्द दें वो कम ही पड़ जाते हैं, क्योंकि हमारी जैसी फीलिंग होती है, हम जैसा महसूस करते हैं, हम वैसा ही लिखते हैं। प्रेम केवल किसी के साथ रहने का नाम नहीं, कभी कभी दूर रहकर भी कोई बहुत करीब महसूस होता है। और सच्चा प्रेम आपको छोटा नहीं करता, बल्कि वो हर दिन आपको संवारता है, बेहतर बनाता है। वो आपके सामने आपके सपनों से ईर्ष्या नहीं करता, उन्हें उड़ान देता है, पंख देता है। जहां अधिकार बहुत हो, समझ कम हो, वहां रिश्ता धीरे धीरे करके बोझ बनता चला जाता है। जहां सम्मान हो, वहां साधारण सी शाम भी बहुत खास बन जाती है। किसी का भी हाथ पकड़ना, किसी रिश्ते में होना बहुत आसान है, पर उस मन के बदलते मौसमों को समझना बहुत कठिन भी होता है। इसलिए प्रेम में साथ से पहले संवेदना का होना जरूरी है, समझ का होना जरूरी है, क्योंकि सुंदर रिश्ता वही है जिसमें दोनों अपनी पहचान बचाए रखें, दोनों अपने सम्मान को संभाल सकें। और रात के इस पहर सिर्फ इतना याद रखना है कि प्रेम मांगता कम है, संवारता बहुत है। तो कहते हैं कि वो प्रेम कैसा जो मुझे मुझसे ही दूर करे, वो प्रेम कैसा जो मुझे मुझसे ही दूर

दूर करे, सच्चा हो तो मेरी उड़ान में भी साथ चले, सच्चा हो तो मेरी उड़ान में भी साथ चले। आप सुन रहे हैं निशिगंधा, और निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयती। अगला गीत सुनेंगे, फिल्म का नाम है प्रेम रोग, और आवाज है लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयती। और निशिगंधा में अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है नीला आकाश, आवाज है आशा भोसले और मोहम्मद रफी की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

बड़ी पुरानी सी बात है, या यूं कहें कि पुराने लोग कहा करते थे कि हर इच्छा का पूरा हो जाना जरूरी नहीं, कुछ अधूरी चाहतें हमारे भीतर रहकर हमें भीतर से समृद्ध करती हैं। जो नहीं मिला उसके लिए खुद को कभी दोष नहीं देना चाहिए। शायद जिंदगी आपको किसी और रास्ते के लिए बचा कर रखती है। हर बंद राह हार नहीं होती। कभी कभी बंद रास्ते जो हैं वो ये बताते हैं कि अपनी दिशा को बदल लेना चाहिए। रात में बीते हुए सपनों को अगर हम याद करेंगे और याद करके हमें वहां ठहरना नहीं है, बल्कि सुबह उन्हें नए रूप में जीने की कोशिश भी करना है। दिल को केवल पाने की आदत मत डालिए, बदलते रास्तों पर चलना भी सीखिए, क्योंकि जिंदगी की खूबसूरती सिर्फ मंजिल में नहीं, उस सफर में भी है जो हमें अपने करीब लेके आता है। कहते हैं कि कुछ ख्वाब अधूरे रहकर भी कमाल करते हैं, कुछ ख्वाब अधूरे रहकर भी कमाल करते हैं। ये उम्र भर हमें नए सवाल देते हैं, ये उम्र भर हमें नए सवाल देते हैं। अगला गीत, फिल्म का नाम है सागर, आवाज है लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

वो अभी हमने कहा ना कि कुछ ख्वाब अधूरे रहकर भी कमाल करते हैं, कुछ ख्वाब अधूरे रहकर भी कमाल करते हैं, ये उम्र भर हमें नए सवाल देते हैं, ये उम्र भर हमें नए सवाल देते हैं। बात अगर हम प्रेम की करते हैं कि प्रेम को लिखना मुश्किल है और प्रेम को लिखना सबसे आसान भी है, तो जनाब अगर बात प्रेम की है तो हम इंतजार को कैसे भूल जाएं? पर इंतजार की बात करेंगे तो हम ये नहीं कहेंगे कि आप उम्र भर इंतजार का दामन थाम कर बैठे रहिए। जी नहीं, जिंदगी इतनी कॉम्प्लिकेटेड बना ली है हमने, इतनी मुश्किल बना ली है, ऐसे में किसी के संदेश का, किसी के आने का, किसी के मिलने का इंतजार करते करते कभी भी अपने जीवन को इंतजार मत बनाइए। जिसे आना होगा वो रास्ता ढूंढ लेगा, जिसे रहना होगा वो वजह नहीं रिश्ता चुनेगा, और जिसे जाना होगा उसे रोक कर भी आप कुछ नहीं पाएंगे। प्रेम में प्रतीक्षा सुंदर है, लेकिन अपनी पहचान खो देना कभी भी सुंदर नहीं है। किसी की याद को अपने दिन की रोशनी बनने दीजिए, पर पूरी दुनिया नहीं। अपनी मुस्कुराहट को किसी जवाब का मोहताज मत बनने दीजिए। कभी कभी रात को अपनी बनाइए और अपने फोन से थोड़ी सी दूरी बनाकर रखिए। अपने दिल के पास बैठिए, खुद के साथ बैठिए और अपने मन की आवाज को सुनिए। आपका दिल आपसे क्या कहना चाहता है, क्या बातें करना चाहता है? शायद वहां कोई ऐसा उत्तर छिपा हो, कोई ऐसा जवाब छिपा हो जिसका इंतजार आप लंबे समय से कर रहे थे, पर आपको वो जवाब नहीं मिल रहा था। और सही कहा गया है कि जिसे आना था वो राह बनकर आ गया, जिसे आना था।

वो राह बनकर आ गया। मैंने खुद को पुकारा तो अपना साथ मिल गया। मैंने खुद को पुकारा तो अपना साथ मिल गया। आप सुन रहे हैं निशिगंधा।

अशकों की तेरे वो बयानी चाहते हैं, अशकों की तेरे वो बयानी चाहते हैं, दिलचस्प सी कोई कहानी चाहते हैं, दिलचस्प सी कोई कहानी चाहते हैं। वक्त आ चला है कि आपको याद दिला दे कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी कि 1 बजे आप सुनेंगे एफएम गोल्ड पर हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। हमारी और आपकी मुलाकात होगी 1:10 पर। कार्यक्रम होगा गीत सुहाने। छोड़े जाते हैं एक प्यारे से गीत के साथ। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में केंद्र सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में देश के बुनियादी ढांचे, संपर्क, सुरक्षा, विदेश नीति और सुशासन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से देश के भविष्य को ध्यान में रखते हुए दूरगामी योजना बनाने को कहा। उन्होंने कहा कि सरकारी विभागों के बीच बेहतर तालमेल जरूरी है। श्री मोदी ने डेटा के सही इस्तेमाल पर जोर दिया और इसे देश की महत्वपूर्ण संपत्ति बताया। उन्होंने कहा कि विभागों के बीच सोचने और काम करने के तरीके में सुधार होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने सरकारी विभागों, विश्वविद्यालयों और युवाओं के बीच बेहतर संवाद पर जोर दिया ताकि नीतियां बनाने में नए विचार शामिल हो सकें। उन्होंने देश के रक्षा उद्योग को मजबूत बनाने और उसे वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ाने पर भी जोर दिया। कोविड महामारी और पश्चिम एशिया संकट का उदाहरण देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अलग अलग विभागों के बीच बेहतर तालमेल सरकार की कामकाज की संस्कृति का हिस्सा बनना चाहिए। प्रधानमंत्री ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के बेहतर इस्तेमाल की भी बात कही। उन्होंने कहा कि AI के साथ मानवीय विशेषज्ञता और निगरानी भी जरूरी है। जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बैठक में भारत और जापान के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों की साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने रक्षा क्षेत्र में जापान की कंपनियों और स्टार्टअप्स के साथ मिलकर काम करने, खासकर रक्षा उपकरणों के विकास और उत्पादन में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर भी चर्चा की। जापान के रक्षा मंत्री ने दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग में हुई प्रगति की जानकारी दी और संबंधों को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की एक पीठ

0: स्थापित करने को मंजूरी दे दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कल सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से लद्दाख के दूरदराज के क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों के लिए न्याय तक पहुंच आसान होगी। श्री शाह ने कहा कि सरकार लद्दाख के सर्वांगीण विकास और संवैधानिक सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व न्यायाधीश आर सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की एक उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की है। हमारे संवाददाता ने बताया कि यह समिति पिछले महीने नई दिल्ली के जंतर मंतर और देश के अन्य जगहों में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के आरोपों की स्वतंत्र जांच करेगी।
1: समिति में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा, दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश शैलेंद्र कौर, सीबीआई के पूर्व निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक एलआर बिश्नोई भी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायाधीश जॉय माल्या बागची और न्यायाधीश वी मोहना की खंडपीठ ने कहा कि उच्च स्तरीय जांच समिति कुछ मुद्दों पर प्राथमिकता के आधार पर काम करे, जिनमें सबसे अहम मुद्दा महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लक्षित हिंसा और छेड़छाड़ की कथित घटनाओं से जुड़ा है। अदालत ने समिति से कहा कि वो मुद्दों का लगातार और समय समय पर आकलन करे और अपनी अंतरिम रिपोर्ट समय पर सौंपे। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाम्बिया के राष्ट्रपति हाकाइंडे हिचिलेमा को दोबारा राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पर पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत जाम्बिया के साथ अपने मजबूत और बहुआयामी संबंधों को बहुत महत्व देता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे भारत जाम्बिया संबंधों को और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति हिचिलेमा के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च शिक्षा व्यवस्था को मजबूत कर बनाने पर बैठक की। बैठक में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने, शिक्षण संस्थानों को बेहतर बनाने और देश के छात्रों के लिए नए अवसर बढ़ाने से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा की गई। श्री जोशी ने कहा कि इन क्षेत्रों में सुधार के लिए सरकार की योजनाओं पर आगे काम किया जाएगा। नई दिल्ली में जारी विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने मलेशिया के जुनैदी आरिफ और रॉय किंग याप की जोड़ी को 21-23, 21-19, 21-17 से हराया। अब उनका मुकाबला तीसरी वरीयता प्राप्त चीन के लियांग वेई केंग और वांग चांग से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Tanvi Gupta. Prime Minister Narendra Modi chaired the third high-level meeting with secretaries to the Government of India at his residence yesterday and discussed the future action agenda of ministries and departments dealing with infrastructure and connectivity, security and external affairs and governance. He urged secretaries to think with a long-term perspective on how the country's future should be shaped. Highlighting the importance of informal interaction and building team spirit among officers, Mr. Modi called for greater engagement between government departments, universities and young people to bring fresh perspectives in policy making. During the meeting, the secretaries shared their experiences on sectoral priorities, emerging challenges and implementation issues. Cabinet secretaries, secretaries of key ministries and departments and senior officials from the Prime Minister's office attended the meeting. Japan's Minister of Defense, Shinjiro Koizumi, who is on an official visit to India, called on Prime Minister Narendra Modi yesterday. During their meeting, Mr. Modi shared his vision for further strengthening the special strategic and global partnership between India and Japan and highlighted the importance of India-Japan defense and security cooperation in furthering peace, stability and prosperity in the Indo-Pacific and beyond. The Prime Minister outlined opportunities for Japan to partner with Indian companies and startups in the defense sector, particularly for co-development and co-production under the aegis of Make in India. Defense Minister Koizumi briefed Mr. Modi about the progress in bilateral defense cooperation and reaffirmed the government of Japan's continued commitment towards deepening ties with India. Prime Minister Modi also recalled his detailed discussion with Japanese counterpart Sanae Takachi during her recent visit to India for the 16th India-Japan Annual Summit in July this year. Mr. Modi also appreciated appreciated the steady momentum in defense collaboration between India and Japan. Sharing a social media post, Mr.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर गीत सुहाने लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।

आप सुन रहे हैं निशिगंधा और निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयती। कुछ बीती बातें रात में अचानक याद आ जाती हैं। बहुत बार ऐसा सबके साथ होता है, तो जो बातें याद आ जाती हैं और आकर मन में घर बनाने लग जाती हैं, उनसे लड़ाई मत कीजिए, उन्हें एक अनुभव की तरह जीवन में शामिल कर लीजिए। हर गलती अपराध नहीं होती, कई बार वो हमारे जीवन में एक सीख छोड़ जाती है। जिस रास्ते ने हमें गिराया, उसने ही हमें चलना भी सिखाया। इसलिए बीते हुए अतीत को सजा बनाकर रखना सही नहीं होता, उसे अपनी समझ की किताब का एक पन्ना बनने देना चाहिए, ताकि जब कभी हमारा मन भटकने लगे या ऐसा लगे कि हम फिर से वही गलती करने जा रहे हैं, तो अतीत के उस पन्ने को खोलकर हम जीवन की सीख को दोहरा सकते हैं। जो चला गया, उसके पीछे अपना आज क्यों खोना है? आने वाला कल हमारे इंतजार में खड़ा है, और कभी कभी तो दरवाजा बंद होना भी रास्ता बदलने का संकेत होता है, और कभी किसी रिश्ते का अंत अपने प्रति लौटने की शुरुआत भी होती है। आज की रात खुद से बस इतना कहिए, मैं बीते कल से बना हूं, मगर मेरा भविष्य अभी बाकी है। जो छूट गया उसे किस्मत का नाम दे देना, जो छूट गया उसे किस्मत का नाम दे देना, जो मिल रहा है उसे दिल से संभाल लेना, जो मिल रहा है उसे दिल से संभाल लेना। और अगला गीत, फिल्म का नाम है लव स्टोरी, आवाज है अमित कुमार और लता मंगेशकर की। तो आइए सुनते हैं ये गीत और फिर करेंगे आगे बहुत सारी बातें।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और गीत सुहाने में आपके साथ हूं मैं जयती। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है नगीना, आवाज है अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

कहते हैं कि उम्र कभी सपनों की उम्र तय नहीं करती। कभी कभी 45 और 50 की उम्र में भी मन 20 साल की तरह खिल उठता है, और कभी एक नई किताब, एक यात्रा या एक दोस्ती पूरे जीवन की दिशा बदल देती है। लोग क्या कहेंगे, इस सवाल ने न जाने कितने सपने रोक दिए। जबकि लोग आज कुछ कहेंगे, कल किसी और बात में लग जाएंगे, और आपकी जिंदगी, हमारी जिंदगी, हमें और आपको ही जीनी है। इसलिए देर से शुरू होने वाली खुशी को भी खुशी समझकर जीवन में शामिल करते चलना चाहिए। नई शुरुआत के लिए जनाब, जीवन में कभी कोई शुभ मुहूर्त नहीं होता, बस एक भीतर सच्ची इच्छा होनी चाहिए। और रात का जो ये पहर है, ये उसी इच्छा को जगाने के लिए काफी है कि हमें अगर जीवन में कुछ भी अच्छा करना है, कोई अच्छी सी प्लानिंग कर रहे हैं, तो हमें उस पर विचार करने का ये रात मौका देती है। उम्र ने पूछा, अब कहां से ख्वाब लाओगी? उम्र ने पूछा, अब कहां से ख्वाब लाओगी? दिल ने हंसकर कहा, जहां चाह होगी राह वहीं होगी, जहां चाह होगी राह वहीं होगी। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है प्रोफेसर, आवाज है आशा भोसले और लता मंगेशकर की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

तुमसे ही महकी मद्धम फिजाएं हैं, तुमसे ही महकी मद्धम फिजाएं हैं, तुम फूल हो तुम दुनिया मेरी, तुम्हारे रंगों में रोशन तुम्हारी खुशबुओं में तर मैं, कभी कभी तुम में खुद को तलाशता हूँ, जबकि मेरी और तुम्हारी दुनिया में बस तुम ही तुम हो हर जगह, तुम में खुद को ढूंढता ये मन, डरता है कि खुद के तलाश में दूर कहीं निकल ना जाए, तुम में महका तुम रंग निखरा ये मन, तुम्हारा ही है मगर जब तक तुमने संजोए रखा इसे भी, किसी मुस्कुराते फूल की तरह, किसी मुस्कुराते फूल की तरह। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है कभी कभी और आवाज है किशोर कुमार और लता मंगेशकर की।

और ये वक्त आ चला है कि आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 2 बजे आप सुनेंगे एफएम गोल्ड पर हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। हमारी और आपकी मुलाकात होगी 2:10 पर। कार्यक्रम होगा रात सुरमई। छोड़े जाते हैं आपको एक प्यारे से गीत के साथ। फिल्म का नाम है प्रिंस, आवाज है मोहम्मद रफी की। तो आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में केंद्र सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में देश के बुनियादी ढांचे, संपर्क, सुरक्षा, विदेश नीति और सुशासन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से देश के भविष्य को ध्यान में रखते हुए दूरगामी योजना बनाने को कहा। उन्होंने कहा कि सरकारी विभागों के बीच बेहतर तालमेल जरूरी है। श्री मोदी ने डेटा के सही इस्तेमाल पर जोर दिया और इसे देश की महत्वपूर्ण संपत्ति बताया। उन्होंने कहा कि विभागों के बीच सोचने और काम करने के तरीके में सुधार होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने सरकारी विभागों, विश्वविद्यालयों और युवाओं के बीच बेहतर संवाद पर जोर दिया ताकि नीतियां बनाने में नए विचार शामिल हो सकें। उन्होंने देश के रक्षा उद्योग को मजबूत बनाने और उसे वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ाने पर भी जोर दिया। जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बैठक में भारत और जापान के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों की साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने रक्षा क्षेत्र में जापान की कंपनियों और स्टार्टअप्स के साथ मिलकर काम करने, खासकर रक्षा उपकरणों के विकास और उत्पादन में सहयोग बढ़ाने संभावनाओं पर भी चर्चा की। जापान के रक्षा मंत्री ने दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग में हुई प्रगति की जानकारी दी और संबंधों को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित करने को मंजूरी दे दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कल सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से लद्दाख के दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के लिए न्याय तक पहुंच आसान होगी। श्री शाह ने कहा कि सरकार लद्दाख के सर्वांगीण विकास और संवैधानिक सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व न्यायाधीश आर सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह समिति पिछले महीने नई दिल्ली के जंतर मंतर और देश के अन्य जगहों में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के आरोपों की स्वतंत्र जांच करेगी।
1: समिति में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के

0: पूर्व मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा, दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश शैलेंद्र कौर, सीबीआई के पूर्व निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक एलआर बिश्नोई भी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायाधीश जॉय माल्या बागची और न्यायाधीश वी मोहना की खंडपीठ ने कहा कि उच्च स्तरीय जांच समिति कुछ मुद्दों पर प्राथमिकता के आधार पर काम करे, जिनमें सबसे अहम मुद्दा महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लक्षित हिंसा और छेड़छाड़ की कथित घटनाओं से जुड़ा है। अदालत ने समिति से कहा कि वो मुद्दों का लगातार और समय समय पर आकलन करे और अपनी अंतरिम रिपोर्ट समय पर सौंपे। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
1: यूक्रेन की राजधानी कीव और आसपास के इलाकों में रूस के बड़े हवाई हमलों में 16 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हुए हैं। हमले में अस्पताल, स्कूल, रिहायशी इमारतों और कई गोदामों को नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने हवाई सुरक्षा मजबूत करने के लिए दूसरे देशों से और पैट्रियट मिसाइलें देने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि इन मिसाइलों की जरूरत बैलिस्टिक मिसाइलों से बचाव के लिए है। नई दिल्ली में जारी विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने मलेशिया की जुनैदी आरिफ और रॉय किंग याप की जोड़ी को 21-23, 21-19, 21-17 से हराया। अब उनका मुकाबला तीसरी वरीयता प्राप्त चीन के लियांग वेई किंग और वांग चांग से होगा। महिला डबल्स में ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने जापान की रिन इवानागा और की नाका निशी को 21-16, 21-12 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। अगले दौर में उनका सामना चीन की जिया यीफेन और झांग शू शियान से होगा। नीदरलैंड्स के एम्स्टलफेन में एफआईएच महिला हॉकी विश्व कप में कल भारत और इंग्लैंड का मुकाबला गोल रहित बराबरी पर रहा। इस ड्रॉ के बाद भारतीय टीम टूर्नामेंट के अगले दौर में पहुंच गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय तन्वी गुप्ता। Prime Minister Narendra Modi chaired the third high-level meeting with secretaries to the Government of India at his residence yesterday and discussed the future action agenda of ministries and departments dealing with infrastructure and connectivity, security and external affairs and governance. He urged secretaries to think with a long-term perspective on how the country's future should be shaped. Highlighting the importance of informal interaction and building team spirit among officers, Mr. Modi called for greater engagement between government departments, universities and young people to bring fresh perspectives in policy making. During the meeting, the secretaries shared their experiences on sectoral priorities, emerging challenges and implementation issues. Cabinet Secretary, secretaries of key ministries and departments and senior officials from the Prime Minister's office attended the meeting. Japan's Minister of Defense, Shinjiro Koizumi, who is on an official visit to India, called on Prime Minister Narendra Modi yesterday. During their meeting, Mr. Modi shared his vision for further strengthening the special strategic and global partnership between India and Japan and highlighted the importance of India-Japan defense and security cooperation in furthering peace, stability and prosperity in the Indo-Pacific and beyond. The Prime Minister outlined opportunities for Japan to partner with Indian companies and startups in the defense sector, particularly for co-development and co-production under the aegis of Make in India. Defense Minister Koizumi briefed Mr. Modi about the progress in bilateral defense cooperation and reaffirmed the government of Japan's continued commitment towards deepening ties with India. Prime Minister Modi also recalled his detailed discussion with Japanese counterpart Sunae Takachi during her visit to India for the 16th India-Japan Annual Summit in July this year. Mr. Modi also appreciated the steady momentum in defense collaboration between India and Japan. Sharing a social media post, Mr. Modi said that they had an excellent conversation on deepening defense and security ties between India and Japan. The Prime Minister noted that the special strategic and global partnership between the two nations is an important anchor for peace, stability and prosperity in the Indo-Pacific and beyond. Union Cabinet has approved the establishment of a bench of the High Court of Jammu and Kashmir in Ladakh. Union Home Minister Amit Shah yesterday announced this, sharing a social media post. Mr. Shah said that the decision will significantly enhance access to justice for citizens living in remote areas.

जिसे चाहा वही दूरी का पैगाम दे गया, जिसे चाहा वही दूरी का पैगाम दे गया, दिल अपना फिर भी उसको ही हर शाम दे गया। उसकी खामोशियों ने जब इनकार लिख दिया, उसकी खामोशियों ने जब इनकार लिख दिया, मन फिर भी स्नेह का खुला इल्हाम दे गया। कहते हैं लोग क्यों किसी पर इतना झुक गए, कहते हैं लोग क्यों किसी पर इतना झुक गए, दिल हंस के बोला यह तो बस अंजाम दे गया, दिल हंस के बोला यह तो बस अंजाम दे गया। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर रात सुरमई लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। और आज सुरमई में पहला गीत एसपी बाला सुब्रमण्यम और आशा भोसले की आवाज में फिल्म सागर से आप सभी के लिए।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। रात सुरमई में आपके साथ हूं मैं जयती। तुम यदि कभी लिखो तो पूरा आकाश मत लिखना। तुम यदि कभी लिखो तो पूरा आकाश मत लिखना। न ऋतुओं का हाल, न भीतर उतरती किसी अनकही पीड़ा का वृतांत। केवल इतना करना कि कागज के एक कोने पर अपना नाम रख देना, जैसे कोई दीपक दूर पहाड़ी पर रख दिया गया हो और भटके हुए पथिक को दिशा मिल गई हो।

पर रखें बेरुखी का सारा हिसाब। कहां तक उन पर रखें बेरुखी का सारा हिसाब, हमारे हिस्से में भी कुछ जवाब कम निकले। वो सामने थे मगर आंख भर के देख न पाए, वो सामने थे मगर आंख भर के देख न पाए, दिल के बीच कई फासले बेनाम निकले, दिल के बीच कई फासले बेनाम निकले। कभी तो हमने भी रिश्तों को हल्के में रखा, कभी तो हमने भी रिश्तों को हल्के में रखा, कभी तो उनके भी अंदाज कुछ नर्म निकले, कभी तो उनके भी अंदाज कुछ नर्म निकले। कहां तक उन पर रखें बेरुखी का सारा हिसाब, कहां तक उन पर रखें बेरुखी का सारा हिसाब, हमारे हिस्से में भी कुछ जवाब कम निकले, हमारे हिस्से में भी कुछ जवाब कम निकले। और अब जो गीत आप सुनेंगे, आवाज है लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम है आपके साथ।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। रात सुरमई में आपके साथ हूं मैं जयती। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है कभी कभी, आवाज है मुकेश और लता मंगेशकर की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

मैं उन सीढ़ियों से भी प्रेम करता हूं जिन पर चलकर तुमसे मिलने आया करता था। मैं उन सीढ़ियों से भी प्रेम करता हूं जिन पर चलकर तुमसे मिलने आया करता था, और आज उस खिड़की से भी जिसके बाहर देखती थी तुम्हारी उदास आंखें। मुझे अब भी उस अंधेरे से प्रेम है जिसके उजालों में चलकर पहुंचता था तुम्हारे पास। मैंने उन सारी चीजों से प्रेम किया जो तुम्हारे हाथों से छुई गई थी कभी न कभी, जैसे दीवार, काजल लगा आईना, कपड़े सुखाने की रस्सियां, कमरे की चाबियां, कमरे की सारी खूंटियां जहां हमने अपनी प्रार्थनाएं लटकाई थी कभी। मैंने अलमारी में लटके उन सारे हैंगर्स से भी प्रेम किया जिनमें सफेद झाग वाले सर्फ की तरह महकते थे तुम्हारे हाथ। मैंने उन सारी चीजों से प्रेम किया जिन्हें तुम्हारे तलवों ने छुआ था, जैसे पृथ्वी, जैसे यह सारा संसार। इस तरह मैंने तुम्हारी हरेक चीज से प्रेम किया तुम्हारे प्रेम में तुम्हारे लिए। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है नगीना, आवाज है अनुराधा पौडवाल की।

और वक्त आ चला है आपसे विदा लेने का, तो फिर मिलने के वादे के साथ और एक प्यारे से गीत के साथ आपको छोड़े जाते हैं। फिल्म का नाम है मैंने प्यार किया और आवाज है लता मंगेशकर की। साथ ही आपको याद दिला दे कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 3 बजे आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। तो मुझे अनुमति दीजिए, सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में केंद्र सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में देश के बुनियादी ढांचे, संपर्क, सुरक्षा, विदेश नीति और सुशासन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से देश के भविष्य को ध्यान में रखते हुए दूरगामी योजना बनाने को कहा। उन्होंने कहा कि सरकारी विभागों के बीच बेहतर तालमेल जरूरी है। श्री मोदी ने डेटा के सही इस्तेमाल पर जोर दिया और इसे देश की महत्वपूर्ण संपत्ति बताया। उन्होंने कहा कि विभागों के बीच सोचने और काम करने के तरीके में सुधार होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने सरकारी विभागों, विश्वविद्यालयों और युवाओं के बीच बेहतर संवाद पर जोर दिया ताकि नीतियां बनाने में नए विचार शामिल हो सकें। उन्होंने देश के रक्षा उद्योग को मजबूत बनाने और उसे वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ाने पर भी जोर दिया। जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बैठक में भारत और जापान के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों की साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने रक्षा क्षेत्र में जापान की कंपनियों और स्टार्टअप्स के साथ मिलकर काम करने, खासकर रक्षा उपकरणों के विकास और उत्पादन में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर भी चर्चा की। जापान के रक्षा मंत्री ने दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग में हुई प्रगति की जानकारी दी और संबंधों को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित करने को मंजूरी दे दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कल सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से लद्दाख के दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के लिए न्याय तक पहुंच आसान होगी। श्री शाह ने कहा कि सरकार लद्दाख के सर्वांगीण विकास और संवैधानिक सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व न्यायाधीश आर सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह समिति पिछले महीने नई दिल्ली के जंतर मंतर और देश के अन्य जगहों में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के आरोपों की स्वतंत्र जांच करेगी।
1: समिति में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा, दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश शैलेंद्र कौर, सीबीआई के पूर्व निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक एलआर बिश्नोई भी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायाधीश जॉय माल्या बागची और न्यायाधीश वी मोहना की खंडपीठ ने कहा कि उच्च स्तरीय जांच समिति कुछ मुद्दों पर प्राथमिकता के आधार पर काम करे, जिनमें सबसे अहम मुद्दा महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लक्षित हिंसा और छेड़छाड़ की कथित घटनाओं से जुड़ा है। अदालत ने समिति से कहा कि वो मुद्दों का लगातार और समय समय पर आकलन करे और अपनी अंतरिम रिपोर्ट समय पर सौंपे। समाचार

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और समय हो गया है प्रोग्राम हमराही का। मैं हूं आज आपके साथ आपकी दोस्त भारती और आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। शुरुआत करते हैं प्रोग्राम हमराही की इस गीत के साथ।

रात जितनी शांत होती है, दिल उतना ही अपने करीबियों को महसूस करता है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें शब्दों की जरूरत नहीं होती, बस उनका साथ होना ही दिल को सुकून दे जाता है। जैसे चांदनी रात में हवा का धीरे से गुजरना, बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह जाना।

साथ का मतलब केवल पास रहना नहीं बल्कि जिंदगी के हर उतार चढ़ाव में एक दूसरे का हाथ थामे रहना है। खुशियों में साथ मुस्कुराना और मुश्किल घड़ी में बिना कहे हिम्मत बन जाना, शायद यही सच्चे साथ की खूबसूरती है।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

कुछ भावनाएं गिनी नहीं जाती, उन्हें बस महसूस किया जाता है। प्यार भी उन्हीं एहसासों में से एक है, जितना बांटें उतना ही गहरा होता जाता है।

रिश्तों में कभी नजदीकियां आती हैं, कभी दूरियां, लेकिन सच्चा अपनापन दूरी से खत्म नहीं होता। कई बार इंसान पास होकर भी दूर होता है और कई बार दूर होकर या दूर रहकर भी हर धड़कन में मौजूद रहता है।

तो आज की इस नर्म सी रात में उन लोगों को याद कीजिए जिनकी मौजूदगी ने आपकी ज़िंदगी को थोड़ा और खूबसूरत बनाया है। कुछ रिश्ते चांदनी जैसे होते हैं, चाहे रात कितनी भी गहरी हो उनकी रोशनी दिल तक पहुँच ही जाती है। आप जहाँ भी हो खुश रहें और अपने रिश्तों में प्यार और विश्वास और अपनापन यूं ही बनाए रखें। मैं आपसे ले रही हूँ अनुमति, जल्द मुलाकात होगी, यानी मुलाकात होगी 4:10 पर कार्यक्रम अरुणिमा में। तब तक के लिए मैं आपसे ले रही हूँ अनुमति। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में केंद्र सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में देश के बुनियादी ढांचे, संपर्क, सुरक्षा, विदेश नीति और सुशासन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से देश के भविष्य को ध्यान में रखते हुए दूरगामी योजना बनाने को कहा। उन्होंने कहा कि सरकारी विभागों के बीच बेहतर तालमेल जरूरी है। श्री मोदी ने डेटा के सही इस्तेमाल पर जोर दिया और इसे देश की महत्वपूर्ण संपत्ति बताया। उन्होंने कहा कि विभागों के बीच सोचने और काम करने के तरीके में सुधार होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने सरकारी विभागों, विश्वविद्यालयों और युवाओं के बीच बेहतर संवाद पर जोर दिया ताकि नीतियां बनाने में नए विचार शामिल हो सकें। उन्होंने देश के रक्षा उद्योग को मजबूत बनाने और उसे वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ाने पर भी जोर दिया। जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बैठक में भारत और जापान के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों की साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने रक्षा क्षेत्र में जापान की कंपनियों और स्टार्टअप्स के साथ मिलकर काम करने, खासकर रक्षा उपकरणों के विकास और उत्पादन में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर भी चर्चा की। जापान के रक्षा मंत्री ने दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग में हुई प्रगति की जानकारी दी और संबंधों को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित करने को मंजूरी दे दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कल सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से लद्दाख के दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के लिए न्याय तक पहुंच आसान होगी। श्री शाह ने कहा कि सरकार लद्दाख के सर्वांगीण विकास और संवैधानिक सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व न्यायाधीश आर सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह समिति पिछले महीने नई दिल्ली के जंतर मंतर और देश के अन्य जगहों में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के आरोपों की स्वतंत्र जांच करेगी।
1: समिति में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा, दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश शैलेंद्र कौर, सीबीआई के पूर्व निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक एलआर बिश्नोई भी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायाधीश जॉय माल्या बागची और न्यायाधीश वी मोहना की खंडपीठ ने कहा कि उच्च स्तरीय जांच समिति कुछ मुद्दों पर प्राथमिकता के आधार पर काम करे, जिनमें सबसे अहम मुद्दा महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लक्षित हिंसा और छेड़छाड़ की कथित घटनाओं से जुड़ा है। अदालत ने समिति से कहा कि वो मुद्दों का लगातार और समय समय पर आकलन करे और अपनी अंतरिम रिपोर्ट समय पर सौंपे। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
0: भारत आज पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। बैठक का विषय है लचीले भविष्य के लिए नवाचार, सहयोग और परिवर्तन, ICT। यह आयोजन ब्रिक्स सदस्य देशों की उभरती प्रौद्योगिकियों, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, भविष्य के नेटवर्क, साइबर सुरक्षा, क्षमता निर्माण और समावेशी डिजिटल कनेक्टिविटी पर विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, पश्चिम उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी आज मूसलाधार बारिश की संभावना है। विभाग ने अगले 2 दिन के लिए आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, झारखंड, तमिलनाडु, पुद्दुचेरी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गरज चमक के साथ तूफान का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। दिल्ली में आज हल्की बारिश के साथ बादल छाए रह सकते हैं। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज पुरुष और महिला डबल्स के क्वार्टर फाइनल मुकाबले होंगे। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का सामना चीन की लियांग वेई कैंग और वांग चांग से होगा। महिला डबल्स में ट्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी चीन की जिया यीफान और झांग शू शियान से भिड़ेंगी। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Tanvi Gupta. Prime Minister Narendra Modi chaired the third high-level meeting with secretaries to the Government of India at his residence yesterday and discussed the future action agenda of ministries and departments dealing with infrastructure and connectivity, security and external affairs, and governance. He urged secretaries to think with a long-term perspective on how the country's future should be shaped. Highlighting the importance of informal interaction and building team spirit among officers, Mr. Modi called for greater engagement between government departments, universities, and young people to bring fresh perspectives in policy making. During the meeting, the secretaries shared their experiences on sectoral priorities, emerging challenges, and implementation issues. Cabinet Secretary, secretaries of key ministries and departments, and senior officials from the Prime Minister's office attended the meeting. Japan's Minister of Defense Shinjiro Koizumi, who is on an official visit to India, called on Prime Minister Narendra Modi yesterday. During their meeting, Mr. Modi shared his vision for further strengthening the special strategic and global partnership between India and Japan and highlighted the importance of India-Japan defense and security cooperation in furthering peace, stability and prosperity in the Indo-Pacific and beyond. The Prime Minister outlined opportunities for Japan to partner with Indian companies and startups in the defense sector, particularly for co-development and co-production under the aegis of Make in India. Defense Minister Koizumi briefed Mr. Modi about the progress in bilateral defense cooperation and reaffirmed the Government of Japan's continued commitment towards deepening ties with India. Prime Minister Modi also recalled his detailed discussion with Japanese counterpart Sanae Takaichi during a recent visit to India for the 16th India-Japan Annual Summit in July this year. Mr. Modi also appreciated the steady momentum in defense collaboration between India and Japan. Sharing a social media post, Mr. Modi said that they had an excellent conversation on deepening defense and security ties between India and Japan. The Prime Minister noted that the special strategic and global partnership between the two nations is an important anchor for peace, stability and prosperity in the Indo-Pacific and beyond. Union Cabinet has approved the establishment of a bench of the High Court of Jammu and Kashmir and Ladakh. Union Home Minister Amit Shah yesterday announced this, sharing a social media post. Mr. Shah said that the decision will significantly enhance access to justice for citizens living in remote areas of Ladakh by reducing the time required to avail themselves of the legal services they are entitled to. He added that government is fully committed to the all-round development of Ladakh and to ensuring constitutional safeguards. The Supreme Court has constituted a 5-member high-powered inquiry committee headed by former top court judge Justice R. Subhash Reddy to independently examine allegations of violence during the student demonstrations held at Jantar Mantar in New Delhi and other locations across the country last month. A high-powered inquiry committee has been asked to examine both the allegations of excessive and disproportionate use of force by police and paramilitary forces against protesters as well as the alleged use of violence by protesters against security personnel and injuries sustained by them. Prime Minister Narendra Modi has congratulated Hakainde Hichilema on being re-elected as the President of Zambia. In a social media post, Mr. Modi noted that India greatly values its multifaceted partnership with Zambia. The Prime Minister added that he looks forward to working together with President Hichilema to further strengthen India-Zambia relations. Now on to the sports. In badminton, the fifth-seeded Indian pair of Swastik Swaraj Ranki Reddy and Chirag Shetty defeated Junaidi Arif and Roy King Yap of Malaysia in the pre-quarters final men's double match at the BWF World Championships 2026 in New Delhi. The Indian pair had lost the first game 21-23 but bounced back to win the second and third games 21-19, 21-17 in a close encounter. In hockey, the Indian women's team has advanced to the second round of the FIH World Cup after playing out a goalless draw against England in their final Pool D match at Amstelveen in the Netherlands. Both teams created opportunities but failed to find the back of the net, with India's defence holding firm throughout the contest. The draw helped India, led by Salima Tate, sealing a vital second place finish in Pool D. And that is the end of this news bulletin.

एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। समय हो गया है प्रोग्राम अरुणिमा का और मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त भारती। शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की फिल्म भीगी पलके के गीत के साथ। गीत को अपनी आवाज़ से सजाया है किशोर कुमार ने। गीतकार एम जी असमत, संगीतकार जुगल किशोर और तिलक राज।

अभी आपने गीत सुना फिल्म संगम से मुकेश, लता मंगेशकर, महेंद्र कपूर की आवाज में। गीतकार शैलेंद्र, संगीतकार शंकर जयकिशन। आगे बढ़ते हैं, अगला गीत सुनते हैं फिल्म काला पत्थर से लता मंगेशकर, महेंद्र कपूर और उनके साथियों की आवाज में। गीतकार साहिर, संगीतकार राजेश रोशन।

मगा। आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं अगला गीत फिल्म खुद गर्ज से नितिन मुकेश की आवाज में और साथ में मोहम्मद अजीज, संगीतकार राजेश रोशन।

अभी आपने गीत सुना फिल्म कुर्बान से अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में। समय हो गया है कार्यक्रम के आखिरी गीत का। गीत है फिल्म लम्हे से लता मंगेशकर इलावर उनकी आवाज में, गीतकार आनंद बख्शी। और इसी गीत के साथ छोड़ के जा रही हूँ आपको। जल्द मुलाकात होगी यानी 5:10 पर फिर से आऊंगी लेकर प्रोग्राम भोर सुहानी। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए अनुमति और गीत के बाद आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी के में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में केंद्र सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में देश के बुनियादी ढांचे, संपर्क, सुरक्षा, विदेश नीति और सुशासन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से देश के भविष्य को ध्यान में रखते हुए दूरगामी योजना बनाने को कहा। उन्होंने कहा कि सरकारी विभागों के बीच बेहतर तालमेल जरूरी है। श्री मोदी ने डेटा के सही इस्तेमाल पर जोर दिया और इसे देश की महत्वपूर्ण संपत्ति बताया। उन्होंने कहा कि विभागों के बीच सोचने और काम करने के तरीके में सुधार होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने सरकारी विभागों, विश्वविद्यालयों और युवाओं के बीच बेहतर संवाद पर जोर दिया ताकि नीतियां बनाने में नए विचार शामिल हो सके। उन्होंने देश के रक्षा उद्योग को मजबूत बनाने और उसे वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ाने पर भी बल दिया। जापान के रक्षा मंत्री शिंजीरो कोइजुमी ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बैठक में भाजपा और जापान के बीच भारत और जापान के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों की साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने रक्षा क्षेत्र में जापान की कंपनियों और स्टार्टअप्स के साथ मिलकर काम करने, खासकर रक्षा उपकरणों के विकास और उत्पादन में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर भी चर्चा की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित करने को मंजूरी दे दी है। गृहमंत्री अमित शाह ने कल सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से लद्दाख के दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के लिए न्याय तक पहुंच आसान होगी। श्री शाह ने कहा कि सरकार लद्दाख के सर्वांगीण विकास और संवैधानिक सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। भारत आज पुणे में 12वें ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। बैठक का विषय है लचीले भविष्य के लिए नवाचार, सहयोग और परिवर्तन, ICT। यह आयोजन ब्रिक्स सदस्य देशों को उभरती प्रौद्योगिकियों, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, भविष्य के लिए नेटवर्क, साइबर सुरक्षा, क्षमता निर्माण और समावेशी डिजिटल कनेक्टिविटी पर विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व न्यायाधीश आर सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की है। हमारे संवाददाता ने बताया कि यह समिति पिछले महीने नई दिल्ली के जंतर मंतर और देश के अन्य जगहों में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के आरोपों की स्वतंत्र जांच करेगी।
1: समिति में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा, दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश शैलेंद्र कौर, CBI के पूर्व निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक LR बिश्नोई भी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायाधीश जॉय माल्या बागची और न्यायाधीश वी मोहना की खंडपीठ ने कहा कि उच्च स्तरीय जांच समिति कुछ मुद्दों पर प्राथमिकता के आधार पर काम करे, जिनमें सबसे अहम मुद्दा महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लक्षित हिंसा और छेड़छाड़ की कथित घटनाओं से जुड़ा है। अदालत ने समिति से कहा कि वो मुद्दों का लगातार और समय समय पर आकलन करे और अपनी अंतरिम रिपोर्ट समय पर सौंपे। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
0: और खेलों में, नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में आज पुरुष और महिला डबल्स के क्वार्टर फाइनल मुकाबले होंगे। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का सामना चीन की लियांग वेई किंग और वांग चांग से होगा। महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी चीन की जियाई फान और झांग शू शियांग से भिड़ेंगी। उधर नीदरलैंड्स के अम्स्टरडैम में FIH महिला हॉकी विश्व कप में कल भारत और इंग्लैंड का मुकाबला गोल रहित बराबरी पर रहा। इस ड्रॉ के बाद भारतीय टीम टूर्नामेंट के अगले दौर में पहुंच गई है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी